शिलाशादि कुनोवेदुना क्वाकिम पाउशीलगलबमतमतुदा नमोताई बंग पान बकयानम पुमागी सिंधा पांग बमतम योरीदना कंगले अपुंगी लंदम जे

ताबिरीबसी आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल दगिनी संगाई चैनल दा हौजिक ताबिरसी अतोप मंगाल थौरम दा कांग चिंगबा रथ जत्रा थौरम असी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट एस ई आर टी की तेंबांगलुने ना संदुक्चबनी।

0: हाय ताबा मामा आई नशा नफाद तुम बहुत त्रिब्रो
1: हाँ घर खबरें मोर बा आई कब थोक सर के बुंगो नंग बुलो इ त्रिब्रो
2: लोए लोए मा थोड़ा आगे लड़का बोल के कोलों का शू पूरा केन थी नहीं ले ले थोड़े
0: लाओ लाओ लाओ ने से पम पम पाई ना तो पम को लाइक तो ना करना था मो नंग बु संगों बाजे थला ब्रो
2: होय बाबा थले
1: सिदी सुतीनीना बाबा का कोई नवारी सारा नहीं को इमासों ने सिदी उतिया संग बामा थोंग गे अदुगा बोरा मा हाउर गे मोरोक तो नक संगांग ना मा मिल गे को
0: मामा नंगी का सिया मथिल सिदी ताब दा सानिंग मने ले भी आते हैं हाँ हाय आऊं थों को
1: होय होय होय
2: आई दी उतिया संग मा चानिंग दे
1: करी गया
2: मंगल का उसवाई का थोंग बदुने हैं ना चानिंग ये
1: इसान है सानिंग इसीदी कांगे सब कोरपु द थोंग बदो कैसी दो हम ना आता हापा के साप दो नत्रो
2: माने मा युम द खजिक तंग थोंग बदी बाबोन मान दोपता याम द थोंग बदो मधु आई शु चानिंग कैसी का हम ना आता का हाप लगा चाप दो मनम याम नंग शिवने आई चानिंग इमा कांग क्या मुआली भगे है बा
0: कोई दे कोई दे इंगेन ये नी पान बदा नी कांग है से को मधु द ने मामा का पेना न बसारो को लाई सुकुरम बा करे हेगे कृषि सुसाब हंगुनी मधुना फरनी अदुगा पूर्ण सत्रा हदि कांग लोबना ने इंगेन की तरानी पान बदा खंगदरा
2: बाबा कांग हदि रथ जात्रा की मरमदा खर लिबियो आयाम तानिंगे
0: नंग बुतानिंग ब्रो फरे फरे पैसा तानिंग हर बिना लिथुक तुंगाई दना
1: बाबा गे वारी दो नुगाई ना ताहौरो को इमादि इमुंग द थब एमला ले हौरी साक्सु थोंग दोइनी मा सांगे को
0: परे परे परे सांग सांग सांग पैसा वरी सारारिंग द साक तो याम तो सान रम टॉक्सिको
1: चंगजरे चंगजरे
2: बाबा मखा ताक पिरो
0: इपा सु कांग चिंग बगी वारी सी याम कुब न खंग बति नते दो आलम मंदगी खर ताबदा दो लाई खर पाबदा सुमथेनर को तो हागे दोरी बनी को याम कुब पति नते नंग नहीं चारों कांडा नहीं न सिंगा तुम पुंग पान नहीं रे कांडा तीजी लगा दो न खंग लगा दोरी बनी
2: होय बाबा
0: पुंग निंचन न तारों को भगवान जगन्नाथ हम दे मयाम बा बलराम गी नुंग सीख रबा मच्चन नंबर ले रे मी मच्चन दोगी ममिंग सी करी कोई है बता सुभद्रा करो मी को मबुंग अनी न मच्चन बु याम न लू न तो बिरा मी सुभद्रा न मबुंग अनी दा सोहर यंग बा पुबियो हाइदर निगाह तो रो मी अतो दा मबुंग अनी नुसु पुबिगे हाइदर या बिर मी को
2: बाबा करी तोंग लगा चतो नो
0: मखोइ न तोंग लगा चली बसे रोड तोंग लगा चली बनी को मचिन मनाओ अहुम न तोंग बा याना न बा रोड अमर सेम सारगा मखोइ अहुम दो युम दगे थोक नमी को नुमित अदु इंगेन गि निनी पान बनी नुमित न शिबु हिंदू धर्म सत पर सिंह अमदि भगवान जगन्नाथ की भक्त गयाना रथ यात्रा हाइन खने की को
2: ओ बाबा मणिपुर दसु कांचिन लिबसिगी मरम दुसु खरा हबियो
0: हाइगे हाइगे हाइगे मणिपुर दसु कांगसी मफम अयाम बद सिंगी स्कोन मणि मंदिर दगी सु कांगसिंगी अदुगा सगोल बल बिजय गोविंदना खरंगन न कांगस याना न सिंग बहोरगा मथंग मथंग कांगसिंग सिम चिनेर मि को नंगु सना कुन मे तो खंग ब्रो
2: खंगिना बवागा इमागा अखोय हुम लाइक हुम बचली दुदी
0: ओ हो हो चमे चमे चली चली चली कोनुंग दगी सु इंगेन गि निनी पान बदा कांग सि याम चाउ सिंगि इबुंग माबु निंजा ब मियो कया कया अरापा अनक पदगि लाग दुना कांग सिंग बयाउ रे येंगोय कोनुंग गि कांग दि याम वांग चाउ खरे जानि को येंग दसु कोतो न फजग्रा बा अदुगा मनुंग दना भगवान जगन्नाथ ने ये तलिंग सिली बलराम न ओइदा दुगा मयाय दना मचन इबे मसु बद्रा लिंग सिलगा गान थोइ दुनो लेक्वा
2: ओ ममांग चाहिए था टीवी था बाबाई बानी यंग की बताओ ऐ काउ दूरी है अदुगा रोत था नाकन नाकन दा थोड़ी अच्छा उबानी ले ही बताओ मी आयाम न पाय का चिंगना बताओ थोड़ी तो मी ने लाई बक्शु करने
0: चुम्मी चुम्मी शादी आम कुनो भी यंग मिला मधुदा मखोई न थोड़ी बताओ पाप से कोक से अमुसुंग अपब महीप पंगी है न खन बगिनी को
2: हरुक्ती उन्थोक ने आम खेको
0: बाबा
2: थमचे की होम चुजाक नाशपति जाम सेम कोमला हाइनो अस जेलीबी गुला लड्डू बेरा याम खेदा
0: चमे चमे चमे
2: कांग मथकता पुजारी सिंह ना हैरुक सिंह दो मियाम दलंग थोरक पदो बाबा अस माय तक पाल दी याम सोकन निबो
0: चमे ने इशान है बा लाई ये हैरुक पंगिंग बा मायाम दुसु यम सिल्ली बनी को अरे मकोई दुसु लंग था बिरे बनी 해룩 방자라바 신기 타모이다 이봉오 마나 잔비레 하이나 간자도나 앞에는 뭐 복절이 보네
2: 봐봐 까이노 마 한게
0: 한고 한고 까리노 시디 사나 한기금 그 쿰라기야나 레이라보니 봐봐 세코 강보 오래가나 아둠 쿰간니 강대보 오래가나 강대 꼭 하라가 노래하잖아 꼬 한고 한고 까리노네 이사나 강닝리도 봐
2: 이렇지 만웅다네 바가반 자가나타 마야이다 마찬 입에 마수바드라 마탕다 바람낭 안 토이두네래
0: 레이
2: 마코이신도 마코츠 기땅 야우리 마콩슈 야우디 마시기 마람다 카라 하이비오
0: 하이게 하이게 난 뿐인장나 따오고 타이나 마망이다 인드라 둠마나 카우바 인타우마 팔람보레 마하가시 자갓기 마쿠 스리 크리스나 야나 닝자바 박다 마수 오이름이과 마하나 마탐 뿐마다 만디라 마 사라가 마붕오기 무르티에도 보 라차도나 세바 짜짜기 하이나 마타모디 닝자람이 마하기 아두금바 자카르바 와칼로나도 이붕오 마나 칸크레과 노마디 인타우 시기 마망다 이붕오나 샥담 홈컷 우한비레과 하이브디 우피레바 마몬다
2: 바바 아홈두디 까리까리 라이기노
0: 아마나 바가반 자가나트기 아마나 발라람기 아두가 마야이데 레게도리바 아두나 마찬 이베마 수바드라기니 하라우 저번에 통나 레박 풍조 된도나 와이디 헤나 우수바이브 미시 티레과 아두 마나 밤조 아마타 팡데 가이네 상다 알 어렵도 분니 빠마나 마하 무르티 싱어도 사제기 나르미
2: 아두더기 샤바둠 하우크라브라
0: 사바 오크레 아두부 사딩에게 마망다 알라드는 인터우다 와펌 카라 하이레미 마두디 까 아마다 마돈타나 사가다바니 누밋 군가 마토이니 수디 파우바 까도

0: ये क्या कोई रे इंदु फमो अदु लोन लांदार पयार थ करिनो एंगोय हंद कि लाय से मीन याम न किनर ब भाई लेन बैकग्राउंड ओयगे नंग लाय हाइब कनानो न तंगले इनी
1: ब्रश का दोंग द थम को से
0: वाह करी इन फिनो सिदि इंदु मसिकी फिदा से एना अने इंदिम हाइद्रा अदुबु नोंथांग लेमा नसीगी मचु वसीबु कनागे कोथक तारु धुरिबनो ओइ बे इंदु नंगने याम केबसे आइ सुपाम पामदि नंगि लेमा थेदम लेबदाइने समजी दगी ता खिदुन लमखांग द पनब मान बदो मदु फजे
1: आइ वा सोइ गांग बता ब लाग बनेति थबकि लाग बने
0: थबकि माय गुडनेस अदुक लुबु वा दो आइ व तहन गनो थबकि वा करी नो मतासी
1: नसी करी हाय नखि
0: नसी करी हाय नखि नसी नंबु आइन लाउ हाय खिब्रो साउनो आइ गाउरी तो साउरी दो अदुम न नचिन पुम थोकनु खुदोंग थिबले ये
1: नसी न त्र इंटरव्यू हाय बदबो हुजि पुम क्या तारे खंगनब्रा थोरांग रोइरो से आइया दले रे मगे दुगा नाइखो आइन असुप याम नवान नंगि थब अमत फंगना बहुत न बसिबो नंग न थौ सुसा सा दब सिब करिगिनो
0: आइने इहाय हाय दन नंग न खनबी बा सिन नि ने नंगबु आइगि लाइरे बि हायरि से
1: अस्वासो तो कसे नुंगाय रि ब्रा सुमने हिंग बसे होजिक ति केन बास्ति हायम रंग भाव लेबंगम सि लगदरे आर्ट स्कूल गि थब सिदिने ओइबा नंगै याम न जाने नंगि एक बखोट बदसु करीम तक आए रोए हे न दुम भगनी तारी ब्राइन हरी से
0: हे मैको मैको इंदु ले मनो आई नंग बुझे के अदुग याम निश्चित हो गया तब नती
1: नुंगा एक हिद्रे नंग सिमा कौन है स्केस्ट तो बयाद रो वो आमर थर्ड बस है फट्टे गाउ तब आई ना है बती असुमाई नहीं बसी बुनुंगा एरी ब्राइ बा
0: नुमाइते अदुबो इंदु आई वहाँ महंगे नंग साउग दरा
1: हाय रख खंग बाई दुनी नंग ऐसी बाई बो साउग साउ सिरा साउग साउ नो सिरा
0: शुम खंग दन सीखी बताया सिरा
1: सीखी बगी दी वादी ये मर ऐसी की नहीं नवा बती
0: शे इंदु आ शे दलाओ आई की नाग दे चंचलो निंग थी ना शे द पामु है बा आई वाम हाइगे नंग साउ दी साउनु नंग साउ की बसे आई की दे अरोई बनी आई खंगे नंग नई की याम नो वाबी रे चुमी आई हाँ थब अमत उधर बते आई की फिबम जुगो चादे बताए अतु वो इंदु करीगे नो नंग ना आई की दम अशुक याम नो वाबी रे बसे अशी मशुक नग पनी कई दौड़े साउर ब्रो भागी तो उन्हें दा भागी तो उन्हें अच्छा अच्छा इंटरव्यू कई दौड़े ने हाई बा
1: नसी नी ने नसी कई हर एक निश्चिंत हो गया इबो सलम नहीं था इबो हो रहा थरांग रहा मो जमीन नहीं रसी दुगा
0: आई ये दुम लग चुके था आई बो अंगांग लेने
1: अंगांग ना दुम खरे है ना भाई नंग बु कया कोई ना खुश समझ ना है ना तम बिकी के दगी आई खंग दिगा उतम ये मोए मकोई ना ने नंग बु याम पामी दो
0: मखोय हाइदि
1: आर्ट स्कूल गि कांबु दो नहाक नने असुम न जंग ओ हाबे यानी हाइबसे मखोय थाजे दब जानि बा अदु द आइन नंगि एप्लीकेशन नसे पिरु बद मखोय के हाराउ खरे इस नंगि थब असि दिने ओइरा गुम बनि दा मखोय नने नंगबु अनथ ओन पाम खरे ओइबा
0: आइबु पाम लि दि करिगे
1: इस नंग असोन थोक पनि दा को नंगि नगुम मखोय न मुन नमस खंगि
0: अदु ओइरा बदि इंटरव्यू तौ दिरब सु अदुम लौबिउ हायु दना
1: मदु यादि मिगि सने बिनियोम दि थुगाय बेयादि
0: ए अदु दि नंगशु नंगि ओजागि थबक तगु मतम द इंटरव्यू आउरा
1: ए याउ दे दे
0: अदु न नि दना लमहुइ मम याउ द बन अतै द सु ममै कक्थलु हायरि से ओइ बे इंदु करी गि इंटरव्यू नो आइ भाब ता बंगम दि आइ बु खंगले बदि अदुम लौब यादर करी गि नो 꼰칭이 강래버 먹다다 킹근이 영도르시보 실렉션 볼게 빠르 갈란 토뻥 안보 번딧 아이 오이다 보시야이 인도 난 아이 보고 하는 건우다
1: 아두 부카야 와버 타박노 나 학당 자뜨는 오늘 왜 부카야 와니
0: 와이 아이디 와이 인터뷰 게 빨라도 중봉 안보게 비디아 잉원다 레이드럽디 감도우니 아이는 마이 티도 나 할락 보오라가 난 누가이겠더라
1: 아두 오라게 해도 난 무캉나 바닥 바이소 하이드
0: 나이 코 답답코 샤오키노니 아우이브니 낭나이보가야 닭비키니 아두분 낭나에게다 막 아숙얌 와비리바 시카리게노 인도
1: 마름 라이띠 와바스 마히나를 뜨는 떠오비니 아시는 바오쿠 모이베 야르드라
0: 하이나락바 하이나락바 시주 야암 낙간 말라이나니 인도 아이 타박다 오라로이 하이나래 하이나래 예수 아이 기쁜 시시
1: 타오게 타오 타오로이도 아이 짜래
0: 또 또 샤오래도 아이브 샤오노 하이를 먹다다 아이코 밤코네 시 샤오노
1: 그러기는 낭나 아이브 속야 모할리바 낭는 타오로이다 벌레레바디 하나 하이베 야드라
0: 아이 라래시
1: 그러기는 다 속야 나이브 셀할리
0: 샤오노 아이 라래
1: 낭나니 아이 나한테 야니다
0: 시 깜깜노 샤오노 아이 라래시 더블게 아이 타박 더블게 답답하고 왕왕 느끼시 아도 부카리기 노인도 낭 나이부 짜크리기 라한테 투하는 리버시 낭 아이부 농시더라
1: 낭 아시 미모트 바 얌나이 아이 순낭기 담악 다 칼라로이 하이나 와삭바시 마 싱부 나이람 나로이 아도 왜 핵당함데 마시 애기야 소이바니
0: 아도 뭐 애기 바오콤 비코 낭 아이부 농시더라 그리기 노낭나 아이부 짜크리기 타우리네 불한딩리바 마두한 하이코
1: 시엣 나쁜 마다수 누가이바 말레이바니 걱담 시엣 나쁜 마가 리상 타바가 수만하디
0: 필로소피 낭네 쇼잉원의 필로소피 하이 안호비 짜크리디 고농기 사골이 야이세기 사파막디 나띠드라 아두가 사골이 야이사 가람나 타미 강나브라 शैशतरा कुन सेवातवी मथक थाकल खली ख्वाई दिगे अनुभव सजिक न थाई नुंगाई दो बुई निंग लुई अपंग भी नंग भी भाबोक ना मुन्न खलु शगोल याई सके पुंछे दो नुंगाई रंग दरा चिंगने निंगाई नी
1: मी ओई बपुम नमक लिपुन अमन न त्रगा अमन न पुन बंगा ने न त्रबदी सांग पुबंगम दुना अंगाओ बगी मरतंग मिंजन बताई
0: इंदु नंग वांगां बुजाम हैरेना कनान हाइरब एगी लिपुन लेते मशीबो एगी इतुम कोई ने इलम बिनु पी मचा दुरा कदाई देखी तम लोई चाओ शांबो वाई सिंग से अदबो लिपुन को दिन बक कलक निकाय जाती करीनो करीनो एगी लिपुन खंग ब्रो फ्रीडम एब्सोल्यूट फ्रीडम अंगाओ बकी कांगबो Kadai kadai dikit tamlu di bawah mayam no.
2: Oi bunga, bunga kau tamlu terau.
0: Eh, lengsem biru, kari tabaki.
2: Untuk penida, ibunga nasu kari tabaki no ingon dah biri. Nalgi foto tu bu sindu perlu biru bra. Wari dah tong nabe saya.
0: Pai bu pai diri. Indu nang hak tengai ku waleri. Tadi kido, ay pai bungam jadi.
2: Is. करीवानुने इबुंगो संबंधों नंगने बत तबीबंग अमलु दोरी जाला इबुंगो न हाईबा चामनी चनीनी थमजरंगे नंगन बीतब यादे हाईजरगा याम बबु क्या रख खन्ने लाख्यक होगी लायक बस इम घरम द्रवदी इबुंगो न वही के तब फिफा मस्से करीनु खंगे से लोईबीरो इबुंगो घर थूना लोईबीरो होजिक ऐने पूर्ण
0: कयानी वाली संबंधोर्दी
2: तरानी मुक्तंगायर बनी ने इबुंगा मत्तम लेटर बपुर नी ने इबुंगा बु थाजे रूप देगे अस्तिफाव फोटो याउदन लोकत करेदो लोबीरो लोबीरो इबुंगा खर थुन्नो लोटोपीना बताऊ बीरो अदुगा वाह मत्तंगा हंदक की पिक्चर शिना याम बु पेलन बंगम लबदी याम मगिशु फजबा याम
0: न फजबा
2: मानसू मालहन गदवनी अदुगा खरदी हे न फजन बताई ꯃꯁꯤꯗꯅꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯌꯦꯛꯄ ꯍꯩꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯅꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯕꯨꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯛ ꯃꯥꯟꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯅꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯞꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯩꯕꯨꯡꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯦ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯂꯒ ꯐꯣꯇꯣ ꯅꯝꯂꯨ ꯆꯣꯏꯌꯦ ꯐꯣꯇꯣꯕꯨ ꯄꯥꯝꯂꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡꯑꯣ ꯈꯣꯏ ꯊꯤꯔꯨꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯏꯕꯨꯡꯑꯣ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯕꯨ ꯏꯕꯨꯡꯑꯣꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯆꯪꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯕꯨ ꯐꯖꯔꯕꯗꯤ ꯁꯩꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯌꯦꯛꯇꯕ ꯁꯣꯏ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯏꯔꯄꯣꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ
3: ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯇꯥꯗ ꯇꯥꯗꯅ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯐꯖꯕ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯗꯒꯤ ꯅꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯈꯪꯕꯤꯗꯣꯔꯤꯅꯣ
2: ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯐꯖꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯆꯅꯤ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯅ ꯃꯔꯥꯏꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯍꯧꯔꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯥꯏꯌꯣꯈ꯭ꯔꯗꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯪꯆꯤꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦꯀꯣ
3: ꯇꯥꯗ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯂꯤ
2: ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯇꯦꯜꯂꯕꯗ ꯇꯔꯥꯅꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯡꯂꯕꯗꯅꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ
3: ꯑꯦ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯂꯦꯡꯉꯣ ꯂꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩ ꯅꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ
2: ꯍꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯧꯔꯒꯦꯀꯣ ꯋꯥꯔꯨꯕ ꯌꯥꯗꯦ
3: ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯋꯥꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ
1: ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯕꯨ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ
3: ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯣꯏ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯣꯏ ꯑꯩ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯠꯂꯒꯦ
3: ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯅꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯏꯁꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃ ꯁꯛꯈꯤꯒꯦ ꯇꯥꯈꯣ ꯉꯍꯥꯛꯇ ꯂꯩꯈꯣꯅꯦ ꯏꯟꯗꯨ ꯉꯍꯥꯛꯇꯅꯤꯗ
1: ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯇꯥꯔꯒꯦ

0: मिहौद बदे नाते अदुबो इचेले खर बदे कम दोनी आये करी नहीं गनी
1: नंगी अपाम बकरी नो आये खांगी नहीं गोतम करी नो नसाब नम थक दोरी बा आये नंग गनी नंग नम थायो आये लोई न खांग नंग गनी नंग अमुक तदी हायो
0: मधुनी मधुनी आये न वाह बसु नंग न लोई न खांग बा लोई न खांग बंगाम बसी ने अदुबो लातों बताए नंबो पुन बचुम दी नंबो आई हम पुल्ला रोए
1: ओ आई कंगले पारों आई लोई न कंगले आदिदी आशिता सुन लोई बतारा प्रगौतम
0: आईगे दिल लोई तरी मशीन आईगे अहो बनी आईगे दे वाली चत कदबा मशीन आईगे खोंग चत की चिंचे लोई उड़गे
1: चिंचे लोई उड़गे आईगी दी मसी द लोई रे मखाता नहीं आया मुझे इतने गौतम
0: इंदु

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो गुड आफ्टरनून मिंगले फ्रॉम हाइबी
1: गुड आफ्टरनून मिंगले फ्रॉम हाइबी
0: हेलो ताबिरी को
1: हेलो
0: ताजरी हाइबी यू मिंगले फ्रॉम हाइबी यू
1: हेलो
0: हेलो ताबिरी को मिंगले फ्रॉम हाइबी यू कॉल तो बिरे इसे
1: मिंगले फ्रॉम हाइबी यू कॉल तो
0: कुंबीदगी चंचन चंचन गसी से कांग नुमिसु ओइरे अदो कुंबी माइकेगी ओइनदी कांग सिंगबगी थौरमसे दुम पांगथोकनि हाइना तौरिब्रा कमाइ तौरि दुगी मतांग द खजिकन थंबियो
1: आ होय कि दे बमोन गजु तांग दे लामना बा अरुना कांग सिंगबदि दुम अखोय अयुक्ता मोंताना आ पोते हिंगोंदा हजाव पोते
0: चंचन वफम तंग थम जगे को गसी दि कांग नुमि सु ओइरे नुंगाई बनुइन ओइ बनिना नुंगाई बवारी ओइन साना से दमाइन थम जगे अदो कांग गी होरेन कांग चिंग बसे अदो माइके योइन दि बामोन से लापि हाइन बुदि ताक पिरे को अदो कांग सिंग बि थौरम से दुम पांगथो कनि हाइ बिब्रा चिंग ओइ दोइरा कमाइ तो अदो सोम दि याव बजा पिगा ड्रा
1: तत कर
0: चही कुदिंग गे दुम कांग चिंग बजे दुम पांगथो पिब्रा चंचन वफम तंग थमजगे चंचन जे गुड आफ्टरनून लेडीज प्रोग्राम खक नत्तब अतोप करम करम प्रोग्राम दगा दि सरो अदुम याबी एखै एसएमएस था दुन इसै खनबन चिंगबसे सिगुमबदे दे दुम याबीब्रा
1: इसै खनब खपदे दुम आइ थाव या जाय अदो बुला अतनम हेदि सुदि नसि गदि अनिरम सुय अदो आहा
0: गुड आफ्टरनून लेडीजद सरुक याबिरऊ चंचन कॉल गामिनासे अदुदि यामना गाइजै

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून, मिंगले फ्रॉम हाई बी यू.
1: गुड आफ्टरनून मैम.
0: कॉल तो बिरक लिसी मिंगले फ्रॉम हाई बी यू.
1: नहीं निगम थोक जाओ कि नुंग मैं कपम दनुजा.
0: नुंग मैं कपम दनुजा. दनुजा करी करी वफम सिंह हाई बी निंबा हाई बी यू.
1: मैम अकोई की बाती एक से खाम गा निगम थोक जाओ ताई नाई बो क्लब ना कौन बजा हाई का रहने को अदु मई सिंग तो ती फंगन दिरे मई नुजेम नुंगाइ रेबको अदुगा आइने नुगाइ जदाबा ना कोई नुंग की तंगा या पे कोई सुमांग जे सिंग ने कथम ने कोई सुमांग दा ते कोई नाइ बोकला ने पोली वजा का सिंग जे
0: होय होय
1: अदु असि जे मरी लेने बा सिंग ना आदि जगह ते अंदर खा तुले चंदन दी हाय के दोबा आदि दी गत जा जो कोई थांग दो थांग दो गा रे ना थुबो सुया होय
0: होय होय
1: इरम
0: ना ला नई चाने लेते अवाबी इसिंग से चिथकीदब मफम मफम चाने चिथकीदब तारगदी अदुम मंखलगा तोंनेब अदुम ताबीबो ओइसनु मरी लेनेब सिंगनसु हाइबिगे अदुंगसी कई कई अतोप प्रॉब्लम सिंगि नत्तब हाइ तारेको अतोप तोप कई सिंग कई वफम सिंग थाबिनिंग बले कांग नुमिन इना कई कई तोबिदि अदुंसु हाइबियु मेम होरे
1: नुकांग हेरो ओकरनी अदगी
0: खुदे ताबीरसी ङ इको नंगसे फिल्मदगी नोमाइथेम पहारी अमदी अरामबम जमुना अनिपुना सखमिनबे इसै सैरेंगबा बी जेंतु कुमार शर्मा अमदी सैरांगबा नोमाइथेम पहारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो। हेलो।
4: हेलो।
3: ताजरी हाय बियू मिंग लाइफ हम हाय बियू।
4: हेलो मैम। इंगी तो आम तो पंक्तुक से जी मैं।
3: होय पंक्तुक बियू दो वाफ़म सिंह पंक्तुक बिजर गई माँगोई ना कॉल तो बिरकली से मिंग लाइफ हम गम तंग खंजगे।
4: ओ कोंगमंदे सना हन बी।
3: कोंगमंदे की सना हन बी।
4: मेटा।
3: होय सना हन बी करी वाफ़म सिंह थम बी निंबा।
4: मैडम आई शिव जान टाइप जो कि अशिव हसांग से मोप से जिमस्टर जेनेन से सिना थोनिंग है।
3: वफम तंग थम जगे सना हन बी सी बहाय बजे मिओय ब खुदिम मकी पुंसी द सु सोई सोई देना तम मबा एको लाइ बक्त नान थो ग चत पे हा रे द वफम ने देना इकाई इकाई ने हाय जे करी वखलोन द किनो सम न सी इकाई बिन हाय बिरी से वो
4: आइना आइ इसा जे मयान द
3: पुचल चाब मतने थमजगे अखी हयेंब मतदा खजिक कानबनीब वफमने सोम फोदे लौ सिंगूगी वफम है हंक से नौ मर कई चूदबदी लौ उब से वन है मफम।

महा महा मेला मनी फेस्टिवल मनी हाने लोग जी बा मधुकी श्री श्री गोविंद जी की अवांग थंग बसन थो सन थो सीधा योगी प्रदान गोंदगी श्री श्री जगत बोंधो मैया मुनि मो फल भद्र मधु मचली दे सुभद्रा ओम की विग्रह हम मधु सही सी की होई बा अनोग फिजोल लेखते हैं लेकिन आभरों हों गब तुंडा लेंथोर प्ले मैं आमुं इतनो बलबत्रा जगत की मधुलो श्री जगत बंधु अमदी मचली बे अनुसुभत्रा रोत रोता दोलाई थाईता भक्त सिंह थोगल तवर दुन मनी मंदिर की पुजारी सिंह दोलाई रे ओहिर दुन लोइने ने पे खाले दुन मणिपुर के तोंगान तोंगान में थांग तागी थोगलो सिंगना येलों मरों ये थांग थोगल ओ थांग थोगल अच्छे दिन असोयना अमत तले इतना मणिपुर स्टेट बैंड पार्टी की बैंड पार्टी सिंगना सिना थोगल तोगी रगा होजी ऐ कोई ना इबुलोगी अवांग थंगबा सनथों अवजी मुझे की मैं आमने हेलो कंगिरी श्री श्री गोविंद जी ये भूमोगी सनथों से ममांग इधर कोई ना हनुमान ठाकुर की महाबली हनुमान ठाकुर की मंदिर रोंदगी लापा अदुगा निंखेम पुखरी मपाल रोंदगी लापा लंबी अदुगा हमर रोंदना मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी सिटी कन्वेंशन माइके यशोंदगी लापा लंबी माइके लंबी अहुम मसीगी लमलोंग पांगने भम होएगी मसीदा हान भाई कोई की सांग लब पुआरी ऐसी इबुंगो की मरु ऐ बस न थों सी मशीन ऐ रमी अदु बहुत जो जिकती मरु ऐ ना मामा अंगलों द खजिकतन हाइगत लगा वंग कई लंबी मेन रोड ऐसी यो फाटिंग ये लों द इबुंगो की अच्छा हुआ सन थों में सुले रे नना इन हंगे चली बेसी इबुंगो के तो उम्मीद सन थों में जुने चे दे मनीं थंबा अदुगा अवांग थों बसन थों मसीदगी हक्तिंग नना अकोई इबुंगो की रोड ऐसी अवांग पांग ना पैलेस कंपाउंड कंप्लेक्स ऐसी की अवांग इथंग थंबा थों गेट मेन गेट एमएसएफ डीएस ले रिबा सिटी कंडेंसिंग सेंटर ले रिबा मापासी की गेट अदुभाव वा इबुंगो की रोड ऐसी लेंगे दो बिगन अजू अजू में नोजे रिबा पाउडर दी इबुंगो की अदु गुमले बदिग्रह मसल रिबे हम सुभद्रा में याम इबुंगो फलबद्रा अहुम मसीगी बिग्रह सिउजी दोलाई थक तो नमो नमो बिंग थोरप्पा मधु गलोई ने रोड की मखोंग सी योग्रे रोड मखोंग योगी बगी नी मैं याम नोजी इको इमी नोग बा पाउडर की ऑडियो एम्बियंस ट्रैक नोंग दी हंग बीरंबा बेम पार्टी की खुंजेल मखोल अदुगा नाव बखोंगंबा हरी धनी नुनी लंबा दु कर खजिक नियम दगी बामा होगी रंगनी अजी ओजिक सी रो थकते लें खर नबगी दमक ते याम नमु उम्रम तान बम्मी तसें नमक अशिकुम बसिदा खुबम ममक काई भी आवन थे करी गुंबा मतं सोई भी आवन थे मधुगी दमक ता याम नशिक सिंना इंफाल इसकी पुलिस स्टेशन की पुलिस पर्सनल से मणिपुर पुलिस की ट्रैफिक पुलिस से लोइने तोंगान तोंगान बा लनाई संस्थान सिंगना वॉलंटियर तो भी दुना लाई बा भक्त बस्ता सिंगा सीधा काई बा कोई बंद थोक तना बा अशोक बंद थोक तना बा दुगल लोइने ना इबुंगो की थोक गल सीधा सु काई फदर बा शोक फदर बा थोक गल ओए बना पुन्न मकसिने आन सेक्शन शेन दुन होजी होजी कसी लंबीदेना कोई निश्चित न पन बता मुंगाई जाते अशोय का बाम तो थोकता न भाई इन हाई जगह भाई रोप थकता की हो रहे सिंबा मी मयाम की भक्त मयाम की यदु कुंबा अंगक तो यंग दियो मजिकता भी रसी मयाम पुने मुने फंगबीरी बा धनी है से रोप थकता ले घर पर हो रहे बाम कुंबा भक्त भाई स्टॉप सिंगा मणिपुर स्टेट बैंड पार्टी अदुगा शिशि गोविंद जी की शना पलाग लोइने ना जय जगन्नाथ है वो पलाग लोइने ना जय जय श्री जगन्नाथ आरती करे आए दिन इबुंगो की आरती थोगल तब जरी अशिगुन्ना

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

0: ए अते दी नोई मथा मखा इलाज फलाइश कान नोई पंगली दिली ना अते दी करी
1: ओंगली विक्टर
0: नंग से फेक्सलम दगो मिंगदी मान करेदा
1: अश
0: आ सी कमाई तमरे सी कनाने बसी कदो बा
2: सासा नोई ने खलिबा मतम सिगिंग ऑप्शन फैजना बनि साचाबा अंगांग दु नते हुजी हुजी एमयू द मास्टर तौजरीबा अंगांग ऐ जाग सुम नुसिनने लोइने जब तिने जब मरु मपांग नि बुवा
0: कै नोई सादिया हा ओए कै नोई सादिया तिने मैसे इसा रनो
2: वो इसा आई दी इसा नु पीजी
0: कर ओए
2: छिले द लाइको नम करी लालो रगे हा अशोक तम तिने मियो बेगी मिनुसी याउदन फुब
0: ओवर द जरी ओवर
2: नम करी लालो रगे हाय बा
1: सिमा बोम द पुखाय बदे गिनी कोइ तान तान खुथाइस गियान ता दिन
0: थ दोना सुपु नाउ दे छिने मखे
2: बि फाइस तोन गन मिना ओवर बोम पिटर ग बोम पुखाय लग लंबी द अरा अरा बि द ताइन बजे बुकरी नि ओम नो ने दुबो
1: शोम छि नो मा
0: ओ आ समु मो खोंग द समे को
3: इमा दे गिलो बा के टेक्स लोग नि हाइदन तरो मता मोद न तरो
0: हाय खनि दे कै नो है कै नो बजे फो मोलम तो बि र मिरो एनीवे मतम दोई छिबिन पुलिस तले जबनी हुजिनो मो कमांडो द लाबा अदो आइना सिबिन देगी कमांडो लाको फोबोजी बने चुम थेंगना कलक पसिदा इबाने जे थुंगनो दोगो मानजलावा सॉरी सिकरान
3: एगे पुनसिले पुनसेम गदोरीबा एगे बोरे गदोरी बनु पाने
0: कर सिबो साले पुरै बो हातु उरस
3: करीबा
0: हा कैनोनी सोंगे मु मनु मोरे गदे कोई थादो चरम गे नाइगे तोबनी को वारु बियादि आ सोम जे सेम दंगांग छिन खंगदब देगे खुटका थागरा माने अदो थोइदोनो सोपदिनति माइन दोनो गुमसिको इबाने दं थेंगनो गिसे आ इमा वरवा दे खितंग मेयाम ने जेकरे को अदो युंग खंग मिना नोमो को थोक सरके ए ए ल ल ल ल सो
2: सिदे द लाइमा चाप चगिन ग मना चेंग को म मांग थु
3: एदना
2: मथौ तौ जरी बा पुक्सेल सेंग ब कया दु नंग न लोय हे मांग थु ए बुंग नंग दौ तौ तौ रदि मा पोक तरे लग तै चाय सु को ब द कमांड ओ हे लोय को आइ
3: कमाई तै नो फमो जे सिदा
1: आइ न सले गने तो बोम दु खंग दन पोखाय रक पने अजि पख पख करी बोय कने हेक्से लुरे इहंग पहुंग दन कोइ तान तान र खुथारे
2: न ते मा दु बो हौन बरा हाइबा करिनो करिनो हाइबदुम दि मोय वांग बहुंग तो बदि हौनै दना
1: माने सिसेलि लिसे तो हेरो दि मा लेम सुता थारोइ मा
2: हाय हाय हाय
3: अदु माइना
2: अदु माइना खलै दि हयार एजुकेशन गे मंगाल वात प मिजिं जि ग मान र कै दौ दोइनो इसाय वा खलम फै जखिन बनि अदु माइना खलै दि बुङो खन गनु क्वा
1: न ते मा आइ आराम लम बि द सलोइ आइन स कदु लम बि आइ गे मिस द उरे आइ स लगे मा
2: ना खों आइ को ता ता गिनु खुजिक त बोम पोखाय बगी फोंग फोंग छारिङै जिदा इयो नायो चलग मिन करि खनखिनिया बेमा इमुं दङ आतंग पुथान गो फारसे दम त पिगो से इनाय गजे फजन त दैथो गो से युम द आलमन ता दि सोइदिन नुं सा थिरोय दो चंगु चंगु इमुं दङ आतंग पुथा गो करि नो दा ज्ञान ग मांगि दा मंग दा हा द थोक द ब थौदो गा ता खुजिक त युम जिदगी चत खिब द गारि बा गा इचा सि बु सुमाइ तोंनि गना था जगे से बेमा
4: इनाय गजे फजन त दैथो गो आई दिए मोबाइल दु मुंदो में हाई बेमा आई मोबाइल दु कौन में तो पुतरो स्मतम जिजु थिंग एम मी उने जाइन अब मतम दु हाई ला ब्रो ओ करा करा आई बुंगो तांग दिले बु देमा करा च करा वा कर सिनेरम गे बो
3: हंग दे दा ममांगे गाडी लंग दे सखे जाला
4: आ मा गाडी लंग दे चला दे मा पाग फोन दे वाडी छाबो न मने मा ने गाडी लंग दे बे चला बा फोन दे मा पाम चला लंग नम दे नि मशीन आंग
3: आंग कम पाम चा हाय बे दु सांग ने सुंग ए नोंग तो वाडी छानो दे बसु या दे अदु खतामो वारी सु सामनम त सानदि सिद खना बग लाउन बग ने आइदि को ग गाउ जानि गोसे
4: आइ मसे फत बग गांग दे ते ख गाउ वई वानि गांग न साने बग तारे ने सा नंग मुंग सिगि माय मसे उहुर बो
3: मा बु गजर गे
4: ता मसम तो थले दना
3: ए
4: गांग न साने या बसे दि बुंग दि हराउ दि ने गंगा ब्रा
3: असिं मने दामो मा से फजन हाय ने रबदि गांग न सक न बताय अदु नत्र बदि नुंग ते प सम बग चा मान जाने दामो आइदि मा तामो
4: हा
3: मा दि सुंग द लापुला
4: ए फरे फरे
3: तामो
4: आइ वा खन सिने
3: रबो ओइ किने मेसे मसम कते बसे एम पोस्ट टाइमिंग अमरे दादा मोते ये ओमे सिबो
4: सुन न फजे हर लरे न कोजिंग चोंग दों चोंग दों करी अति न ओ पोस्ट आ पखंगा खंगजर बरा बा
3: ओ खंग दे द खंग दे नो आम दिगनि मि दा फाबो लारि पाओ आ हसिंग गे सेबा ता ओ न सुम लेर ग हौजि बो गदा दे पोस्ट आ बनु पा नो
4: ए आइन लाइक पाओ हाइ दों न त्रो विक्टर नो नियन तक एमएससी फाइनल दा जॉइन तो पर फंगि दो आइन हलमन सिंग ब्लू न चाना तो साइबदि अतै न तिरे गाउ बि येगो इमा बाजे नि कोनी पिसक न दों पिरमे ताइवन गि नुजु नु सामरक सिदा उरु मचे न मत फंगद्र बलम बि चपग मसि चिलु पान ले ले पुनसि अहलमन सिंगुलु न चान तौ जबदुना मथंग गि मपुक हाय बदुदा इमा बाजी गि नुसि मि एन खादा मतम कुइ नि हिंजग दुइ नि ने खंगब्रा
3: तामो आइ थंगनि बा आइ ने सुम फागि दौ बसिबु अतो तामो
4: हाय हाय
3: आइ गि सेबा दुदा अहलमन सिंगु न पेंदि र ब्रा कैनो खंगदे आइ मदनि तामो इबे मा नंग हयिं अफबि ओयु को हारको द

0: 아이기 부모 와큰세 인부금 더위 담아 마시나 레이키드바 이마바지기 마팜다 마콩 먹고 빠지는 세바도 오금 간절히 변이 담아
1: 할라만 신의 비버 보르디 리브는 망디 하리 분이 나가고 비
0: 하시문이 담아 아이디 할라만 신이 또 음식을 하시니 거이 아도
1: 아이 라원에 와 그 신내람 괜또 분이 아이 능
0: 맞다 마상 같은 것이 안 보고 타이밍 안 말아도 이거 말이야
2: 또 이놈 신이 무슨
0: 말이야 아이 파마가 이얘기 얘기하다 마시
2: 하긴 오세요 담아라 시고 들어는 거 기노네
1: 야래 고마이 참 먹이
2: 배
1: 샤샤 드리바 아이 라오네 와
0: 그러시네 람 게도 내는 거 어 너무 마삼 같다 보세요
2: 보스 타이밍 안 말아
0: 아이 마치 밥 먹감 대인 게 개다 마치
2: 아이 노래 나 모르 시고 들는 거
1: 하다가 밤이니 무사
2: 나 모는 거 어이 그 원이 이까이 가자니 제이 자니 길어 밤드나 이씨
0: 와도 파자 보내 섹도 나 한 길로 살라 타미 개기는 한거
2: 앙앙 낭낭낭낭낭
1: 심어시도
0: 앙앙 어디 하이노
2: 오 능장 앙내 봐 이제는 비밀에 누구 농가 아니네
0: 땅 낭문나 탄데포 에 할가 काय देने से निपुण ना गांगी दुबो
2: लई मी चरो बी मर फुंगले वाली
0: सासी कने तम मांगा
1: छ यार ए तुमने नसे नोनी वाल तारिन रे
2: आई
1: वाहे के आ आई जे थिंग अबनी मतम सु
2: ओ दो
1: नंग ने खुंगो भाइलिन छ्याम फजे ने ई सिदले ब हल सिंग नंग से
2: ओ
1: म्यूजिक कॉलेज न मिंग चले तम से ने हाय
2: हो ये दम
1: ग्रेजुएट रे गमा खाजु तम थरे
2: हाय दमो सिलाई की वासे तो ऑक्सीड
1: ई
2: आई कोक्सी गम जानरो वन
1: ओय ने ओय ने
2: सि भाइलिन जसम पाम जबे पंगले लेन बे
1: भाइलिन दुरे ने हाय रे से नंग हा ना हि दुगी मतक तम साना ना खुंगो हाय ने बा म्यूजिक कॉलेज में मिंग चला तम से बा
0: तम मन लो नो का मो
1: आ कैदो उरे के
0: ओय रोय दो बदा
2: करीब नो जिकदो
0: ओ ओय रोय हाय बा
2: ओ तो दे तम में
1: ओ वे बेरे ने बुआ
2: तम ओय तम में सिंग मने
1: ओ भरे
3: नंग दी चाचो वो
1: यार ए नो नी तो खो के दो रके आई से थेंगा बनी आई की थबक न का चिन मग नो त नेना ता न वरी साब संग दे
2: ओ हाय बी दो
1: नंग नई की नाक तले रे सि फन दे म कुई रे दो नंग युम लोंग की मा बाजी दो नो तलाक पई थेंग न दे नंग सुमो की मरम द नो त पन दे मसे कर माइन तो बुनो या मखर खंगनिंग नि बुवा
2: तमो मदु न नाउ तम जगे न नाउ थाजे बियो
1: आयु
2: एगी मादि पिसक पिंगे दले खिद्रे बाबा म तोंग दले
1: अइन
2: बाबा द पंगसाउ न सौनि मखले तमो अदुगि ने युम थादो लाइजे तमो
1: ए करि गिया
2: तमो मादि पैसा द खले मागि ठिकागि बिल सप्लाई गि बिल अदुगि पैसा आदा गि पैसा नुमिन कुदिगि तमो पैसा द खले माने बु पिंगे दे बोर्डिंग तमे एगी अवार पसु अम दले हिन किदे अदो तमो अइन क्वाई दे पाम जबु कै नो मदि एंगों दे इवा तो वार बुगम तोवे मि तमो बाबा गलु इन द बदि गिदिने अतोपो जासिंग मरु मपांगसिंग लोइना बने हेना मतम हेले अकुब बवान खल्ले ब आइशे आइशे मागी मरन मथु मयाम दु हुंदो न बपो को मसानी हेन अदु गोदा मोइन मु खल्ले बबा ने बु मया ममा न चाकनी बंगो हेले तम एने ता मोगी मफम सेला को दगी ता मो दगी अमदी छिले रे बहल म मयाम सिंग सिगी मफम दगी आइगी खुशी तिं थुक दु न नि रोबले द्रगसु आइगों दे याम नुंग शिव मिनुंग शिव म कपंगी
1: राइट
2: जबो वंगांग निंग थी बो हे आइ ता बु फंगी तम अस्सु दु मो युम ददी बवारे गोन नुमि खुदिंग चंग गिबो पैसा मजिंग पल्ल पल्ल गांगे तमो आया मैने दे दे युम नगलै बा
0: हाय अपंग अदु दिन नंगु फानिंग रे हाय बो वरी नि बुङो
3: इमा इमा इबे मो
1: हे मोनि जे मो
2: होरे कंबिने दगो मसि मसि किन जानि मसि
0: मे
2: मे ने जुन
1: आय जुला कोइ नो खने बुङो मे जुन ने जिबु कैनो वाक तो न बया दे हुई गौ दुङो दुङाय नोय बो
2: वाक खने बो रिन तमो
1: आय वाय के आइ जक दो जे सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर नहान मोय लाग इंस्पेक्शन तो विरम बदो मोय ने कौ बुने इन तो उनरु के लैरी बहलमन मयाम सिंगसिगी मबुबुन पेन अब सेवा तगदबनी खने चैनल गुनु को ए उ चलु गी
2: होय दो
0: इस हाय अपंग बाबा नंगांग द छाव बापंग आ
2: सिनि
0: बिजु ए कोइ दिमो लै कि दबे मा बाजी दुना अम तंग लाग फुबी रेदि फरानि द को हाय दुना खाली
2: आइस
0: अदु ग नंगना बाबा नंगांग द छाव रिनि ने
2: ओ लोजरो ए कोइ द लोजरो बा आ युम ने थाना स खिल लगे बा नोंग आमदे नुमिता बावा पी पी पी गामले ब किंग कोबरा दोंना ए लिनथ्वे नको
0: ए नो
2: ओ ए ना नो वंदे थादोई द हाय वाय वदो हाय क्रबो हाय क्रबो मी
0: अतांग मदि वादे वंदे हाय नदन
2: कोई नो मसिउ नाम ददि हाय उदा न दै न मानु सिजे मो वंदे दै हाय उदन गो
0: अदे वादे वंदे हाय गनो हाय बा
2: कोरी नो मसिउ
0: ओ तो काना रोय द बवाने हाय बा
2: हाय गाय गाय गो पुन सिसिबु काना बंगा दिङ लोय न बो
0: सनाय
2: दै न तोय काना बुगा देंगे लोइन नबे वानी
0: ओ मीगी नुसिले बले हाय बेने मिनम गो
2: तो तो तो अदु तने इदा माजे कां कोई कोई निगाई छे
0: हे मै मै मै मै मै मै मै मसिति पुरा जानम नि
2: छे नुसिले बले बिदुन कोई निगाई
0: एंगम सरोय त मसिंग आंगना
2: मी नेगा कोई न दबु नुपी दे कोई कोई तले हे नते मान नु पादु गा हने थेंगने रुपगे नुसिने जबे वानी आइ शुमा बु थेंगने रुपदे के नुसि रुरे पाम जरुरे सी फौ दिना मोंग दा हैपी बियादना ना
0: अतांग
2: नुसि दे
0: आइ मदु के वादो हाय बे सोम हेंगम जारोय या
2: गम मोय नंग दि
0: नंग ना थौ नायम ने दिने नंग सान दुम हाय जरो को आइ दाइ लेति
2: हाय गिने थिंग दे बो वानी
0: केना
2: दि ना मान गो गाय गे आइ दे था
0: इनथोय एमा असि दु पिसे वे के दो लाइन
2: से ले ले ले ए दा दो शोंग ने ले हाय रे गे
0: असि ना हाय बे दे मा ता चलो ना चलो
2: कुई रे वानी
0: आइ
2: जे ले ले ओ आइ मा यु छले गो मा दो छले
0: ना सवे ला कै ने हम थासे दि काय के सले ने नै बो
4: kaini bi mesel lai ni kaino
5: te kai lege ba
4: sai lege ni bi ma na khoi ni gi to por ba gi tri tau ni ha ma ka jar ba tumi ne dia
5: oi bi ma tu no hero sin pa ba ha ra ka da ngai du lai ba adu ma de tu mi ne ga lai tho da na
3: mai
5: ai se som da hom se tha do pa ya da ba du ne ni kha ga ba na adu na ba ni lai sham pa ri lao i mung de sang ga ne wa ri aru bam sa na do ba lai ta da sa lao
3: he li toi ako shi nang home si thadop yaro khan bade gi mafum si de la awne
5: aduni
2: aduni da
5: manga ko ni di ka ko gom le ni
4: kai no
5: bitara ako ta mona ne ya upc gi phom si lo le habeni aduni thadoi nang gi simen jela ka thasan kar si ko
2: mai ha si
3: asadu di ta nam sare he ai shi do gen torom bane
2: paam janam
3: thadoi nang thajela re dra
4: ai di thajela re da
5: e
4: na khoi ni gi phana ba sembi be ma pura thau ni le ga
5: ge si ya de ko mi ma sa di lao si mu ngai sa lao sala la sang sa bi
2: ka sa mo yong tu ni ko
5: ena kai no kai da mung lum da le de mi no sim sa ka boi ni
2: ni le hai da ge hai da ge hai da ge hai da ge
5: atamo
3: kana anu si na
5: atana ko sa lo
2: hai tamo ni de sa kre ma si sa na
5: lo koi sa le ge ma ta lu si
2: po ai oh ma yap si la ni kan bi ya de ko ai gi ming atan
5: sa hou do re thana ka mai ta ni ta la si
2: le elais thanil ai ma si gi always home si da thabuk su na le mi oi mani som gi ming victor am i right som gi ming thadoi aya na kangji da adu ka na ngai wa se kui roi palwa da ge ku kui ro
5: ta nang wa to ko na ha ro akhoi nga si ni wari aru bam san da do ko le le nang chao bya ti ko
2: kui roi mi thodong mu si ka
5: sok sok kha ge de ka ni ma na victor thadoi ma ngang si kaim tau nu ko ma si angao bani ko ma si si na pe ka na ta ba de si na ba ni wan tu om ta ta ba ya ti ko
2: kali
5: ma si ku kui roi ni tau si ai ti le
2: ma si di
3: ba do kali wa no ha ro da na
2: bro nang so ko ni da
5: e
3: os bro na mu to re ne
2: ado yo wa ja hai da di adro
3: ado kali wa no hai ro mi
2: as bro nang so ko ni wa
5: ne sikai ne ma ne bro bra na to le ni si bo ma si bo ai ma si ka
3: mai ga
5: na
2: to ai khang e ba ma so ko ne bo
5: to si ko ne
2: ado hai da di adro maram di shum thamoi de phum ma tham si ai yam ti no wa ra ka dang phong do ga relax do ma le bro nang yam la na khang ko ke no ne wa si ba
5: na te na ga do ko na hai hai ba ni mi nang ba
2: ku yi roi mi nang ba
5: sikai ne ma si bo
3: kari no masu sho no ju ka ga su rang ni
2: ko ai ya wa ji mi ni
3: a to kari wa no hai ro mi
2: bro ai ta do shi yang nu shi
4: kari ya
3: kari ya
2: yang ti du shi zan ne ma bu ru bu ni tu de ai gi thamo shi hai pom kan na ga ro bo na ya ma la kan ro
4: ga ne wa ji ka ya na ngi to kai no
2: ဟာနန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့နန်ငါငိတော့ကဲ့န
4: 哎呦，bro，够给够。啊，是，bro。啊，都什么都问你的，嗯，是不帮着不是的呢？他们一点好不一会冷呢。哦，right，right，I'm sorry。是的，可能是听俺婆的的。嗯，I'm sorry。啊，都哎呀，还是你我父母的，他们一度也弄挨着的抗着。嗯，妈在回去没机会呢的，哎个弄新的这里。哎，苦都俺们都熟悉给够。哎，苦都熟悉给够，我熟悉。呀，苦个熟人。妈在，哎个弄新的你不能把。哦。哎个婆来个都你不能把呢。哦。啊，都能给王生俺个，我都不能得的嘛，还能。啊，那，no。
2: 哎，过去他多呢，也拉那看基本功来的。哎，是努力弄新的，不得哎，可是也是为国。啊，怕嘞？该努力是看不看的，该苦劳努力。是不哩呀？那这从刚，这从来的嘛，是不？新奥的，我们这都已经。都没得阿德勒过多的，是不？啊，哎呀，的呢？该那个嘛努力是，该那多会打的呢。嗯。妈的，给我一个，是不哩？哎，妈，该那个嘛努力，我是哎个嘛来的，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆地啊，不是那个海陆 아야디 눅시나 보고 등 막시 동네네 하이브들 레이 되더라. 고바 고놈 내저리 봐. 라이벌도 덤덤도 하이브 소마 레이브니다. 아두기 하이브니.
3: 아도브로 스마이토 보니다.
2: 어 하이브.
3: 아이 코인이기 라이벌 시디야. 코인이나 너무 샘자라봐. 마지 아기네.
4: 이슈마기.
2: 아 두다이 게슈 예세로 있고. 하? 눅시나비오 동나비오 본실레 본시엠비오 아이게 좀 마인도 제대로 브로 아도 브로야 이디 그리고 뭐 노이리시 애니 컨디션 한데 이 까이나 없다라고 Made lonely.
1: Mamalu Krabi, Magamaga, I'm lighter than Nung Lazy Bangani. Hanaximaji are from the Manipur University, the research town is one. Tinizer is why he's an opinimane, Victor and Nupamachamaga, Moyum Silunachana Tinizabani. Hundred Simoyum Puna UPSC exam Taminabada, Lyon further up Victor, Haribunupamacha to the IS Pangle. Kari Kanmano come the police officer when he IPS when a lower name and a candidate. No
6: IPM
1: again, I come the extra taxation of Saran Pange.
6: I didn't
1: like Pongi. Wait,
6: wait, Nang soina social welfare minister da.
1: Oi.
6: Ai ang nu bu khari ngir ti kam dau ni na in har mang
1: ni. Moi la ka inspection to wigre. Ai bu su ko wirak tana I una zaru re. Lupa ku ro ma gi senthang di moi ne pibi re khurai bu. Nu
6: ma
1: pu ma khurai bu ta women cha na kau jaro khurai.
6: Ai ai kari to women one ku si ba. Mi ro di amma na bu mo angam ba da ba ting pini ka da ba.
1: Oi.
6: Eh atai lai ri.
1: Atak piu.
6: Akoi angau ngutu ko nu ma sam.
1: Eh khurai bu. Masam kak thale ngang na sana pura norman tare ai ne suma bu music college no ming cha laga kharkathari ye khurai bu
6: koi nu music college di
1: ah khurai bu ma ra lak bu dai yidla ku da violin man mam khak loine jare ayuk khuding I ma ne he khong bu sta ba da mok cha jantra khong yam pha wa hal manglim jao do yidle ri khurai bu wa
6: khoda manglim jao ha bi di
1: ah
6: baila
1: ah hoi hoi khurai bu Hal tu, nama sih ngang sih sama tokan ibu. Music college tu ming jalan sih. Kan tak pada gaya ini mabut dia maga. Music college tu kerja thazari wa.
6: Mana tu? Tapi tu mai pun ni hai tardi. Kaya tu wajah mandu bahelan kongdiri mana? Mabai ni kaya orang orang kalah kaya ni jaya.
1: Kerabu. Ado, ayeke ibu sih kat tiela matam kerja kloi ni jawab sih dah. Ayeke experience dah. Kerabu ibu ke maga sih mabai masa mandu wa. Kerabu itu nama gap amirai lebu. Ibu mampu tengah jawab sih.
6: Sukar ni ni pun sih ba. Koi pay sa si pay sa ni dah ibu.
1: Hoi.
6: ครับนูก็ปองไม่พองพองจริงๆคลิปนี้ตัวบ่กี่ที่ครับผมว่าหุจกานี่การเจียนะมันมาซาสิงสิผานิงนี่ให้ดนะอังอังสิงตัดตนหังบ่หังครเลยอ่านังกี่กะวะละลิเมกี่มาซาละผะระกะนังนะผัตริบะกะรีกินอสิกุมอหังสิตัดตนหังใบทิงนะจิมันมัดตุนี่มอนดาหรสิบ่นังนะผะโอ้อีปาละตะลิบะลันจุงเซนแมมสินังมอนดะลอยนะหายตัวแกหิยละแกบินิสิบ่อังอังผัตตีนะครับผมว่าอังอังดิผะระวะหะระกะผะกะตะบะนะติ
1: มวยบ่คนสิกษาเนี่ยเนี่ยบีบะมีนุงสิกะลอยเนี่ยเจบีบะงางบีบะลอยเนี่ยบีบะมะคักจังไอ้นี่กะริเมตะคังจัตระบะสุไอ้กิเซนปิเนเอเมซีไฟนอลทารุหลักปะดาไฮลาโคลอนังกุเซนดุปุโทสิกะริเกคุมะเมซิวนดุกละมิชินะกะริกิไอ้กิวังสินะมังวนดาลาริกปานิงบิอิเทลัมดิปีบะไหนะคะลินูมะกิมะนุงดาอินะซังจัตระพอตุมลัมดาดะโดระบะสุนังกะสิกะริกะริคังเงงะเซบะนุมิชิดะกะรัมบะกยานพังงะบะเกไฮบะวังสิตัตตะนังจิ
6: อดูคุยครายบุงกิดิเชลลี่บะทับกมายามสินะไอ้ยามาคุเชลเซเรลัยตาเจยบิสเนสติตเตลเพลุตาบดิเฮบุงชุมเมครายบุงครายบุงนะเซ็กชั่นเนเซเนบิบะบิสเนสตุดงะชีครายบุงมาไปครายบุงนะเซเนบิตะบิซาตางดิงะชีครายบุงกินักตุกิลาบนะเลยครายบุงมะปามานินบิบะซากะนัสเตนบิบะซากะซากิซักจัมมานะเจระบะสุมะฮาวตุงานกะนิมะมาปานินบิบะซากตุดะมินุงชีไฮบะมะคักยาวรีครายบุงงะชีซาตางนะคอรังลิบะชี
1: คุณไอ้บุ้งกี่เมนูสิกลอยนั่นน่ะใจบีบังงั้งบีบลอยนั่นบีบดินนานมาเคยคุณไอ้บุ้งนะมึงก็จะทำวิริบสิทธิ์อ่ะตัวมันเสียนทั่วเว้ยทั่วครามันเองนะคุณไอ้บุ้งอ่าฮะโอ้ยไปบุ้งจ้าสิบก็ต้องหันหน้าย้ายเราอ่าฮะฮะมันต้องดูแลงงตั้งแต่นั้นตอนนั้นฮอนอร์มุกงโอ้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยอ่ะไอ้กี่วันคุณสิบคุณสิบอ่ะนานครับบ้างเฮ้ยบุ้งวันนี้สิคุณสิบอ่านานสักสี่ที่ดูมาเนี่ยพันกระดิ่งก็จะเล่นเสร็จแล้วโ
3: 어이 도네 시기 용신이 너네 당나보 호텔 지나서 달리고 아니니까 이거 엄마 사연 조금 있던 너네 나가다니
7: 어프리죠
3: 데리고
7: 어프리죠
3: 살아 아씨 다도 이러고 우리도 이리 보내고 이러자 아스마하기 마석도 파리 바싸버리자 아이나 엘디 로우인의 뜨기니 자자 신어드나 마부 방어는 혼없이 마이지 박박되자 어디든가 시디 그런 멋뜨기니 신어라가 모이기 뭉뚱상가네 가만도 코인의 신의 버티기니 보 말을 왜 큰 건 말하네
1: 아 용신 갈래게? 용신 니 문에 들어? 대로 가면 되잖아
8: 끊어
3: 안오 마사노 비디오 디 아스 마마 왜 돌아
8: 끊어 안오
1: 아 용신 갈래게? 아 참! 에이 용신 갈래게 싫어
8: 아니 나 또 왜 이리 집어
1: 용신 되게 미리 다 많더라 그럼
7: kena kaitu buyar lagi ibu.
8: Ima, masih kau ima ibu sih dah mikir anak lagi. Lelaki tu mungkin lawan panthulona. Ima hari am turun tadi ko.
7: Kau ini jasa mang dah ada tu kerja betul dokum na. Ima jasa lelaki bayum ni. Kena anak kari la anak pau pisin birak pada gigi. Atam nana mayam nana leng birak pun ibu.
8: Ima ibu sih. Rekod am lembu ni kau ni.
7: Kari apa?
8: Aku sih lawan kangen ini ima waru ade. Aku ibu ni semua kangen tapi ni. Apa tu kangen yang jaga ya aku.
7: Madu tau bini ibu. Imana thamui sing na hajari mapana pisak pikna hundok piram madagi imana maning thungan mangam dana icha che chauna ba yok charak pani adu bui bunga handak te icha che jare phang yai duna emi bada makhoi yo ja sing pithap thak tawne na chachak khibani
8: ha
7: khangau dana icha che wan thar e dana hospitalize dawru badadi na mata suna tana icha gi kidney ani mak pheloi duna
8: kare
7: Kuji kuji pamung deh ya tadu na layar bin. Nakoi me anu lapai pahu si tara gay cahana kariway kedagi. Madu suki tang kanta bayu ibu ngah. Imana hajar si am tamoi siang na hajar apa ibu.
8: Ma, kau si mizum bilang si. Imau si anu pi mas hangam deh madu kita mtadi. Aisyu, ya manu aja deh ma. Adu ma kau itu pale.
9: Kau ini mui tuh si.
8: Itak thong na kau itu kau dani. Masih di kampung pale bintang deh ma. Imu ngurus sana loi nama kangen deh ni. Ayah, tang doh el sana yang jadi jadi kau mau ruwah deh kau ma.
7: Ibu ngah. Nang kita ang dihen malinak.
9: Si uncle tu phone tu juga dia aruh.
7: Imai cahne nang wanda kari lan kibala itu nang imai cahai pun cheese dan nang cuk yam nang sing nabi ribanu.
9: Halo uncle.
7: Nang yam nungai terangan imai cahne mak pulap hat kesu hatuk piramoi bungo. Madu nang imai cahai pun cheese hen santi wedani. Hey, cangu. Nang yam nungai terangan cangu tiu. Nang nathening bapori bung sakit tiu. Aduh bu, nupi ngah tali bi mung ni, nupi polis polo. Aduh kan, nang nteining bapoti bayang ni. Kali kau menang nacing nari bapoto le ram draga di. Imai cak kali tahu nasi kaya, aduh nang kahana cede ina usi mu.
8: Imai nak kau itu, jangan tak sih ada tu menatin. Yang nak beli mu pamdo, nupi polis ngah ikut mu hebat akak nawa pam. Aku kau itu lagi.
7: Oh,
8: aku siapa nak kau ngah milikin aku?
7: Tahu nak minum si lagi.
8: Ligeli warista, ta aku ni ina tamzari si. Aku musang cek tong cek. Imaan ngangat pangtar itu nampak tu, ayuh nanti mak.
7: Siapa di dalam?
8: Hey, hey, si kami kita, si kami. Ngau ayi terkidu nato. Nang si di nasana kongtong na, namang tiapalam nato. Hey, nang si di phone tolong. Hey, tolong si phone tolong.
9: Tawa lepas ini, online dulu ini si waris sakit tu.
8: Ha,
9: phone sing tu baby.
8: Hello, hello. Sir, sah semai tu bni, yang nasi ni bapak aku pilih berdegi. Aku yum setelah sah bni sah.
7: Mang hati tu kita betul tu, kita tu itu.
8: Yang sah lagi pun kita tu kan, yang tu nampak sah lagi sah. Baiklah.
9: Jarbo. Hello uncle. Okay uncle, thank you very much. Baik yang nampak sah le. Aingat tengah lagi lagi lagi. Okay, bye. Thumbs up, uncle. Hello, sir. Aiyi Ming Atang. Ningsing biri ko. Matung mau naudine. Yum si dia amukan sang biaroi. Yar gede yum si dia koi udah amukan nasak tu urkano. Matung mau naudine tiang naradine. Kasong kulian tu kual gak langni enang.
8: Misi yam nusin itu erha.
9: Niu si tu.
8: Sangga kah lede gaida. Hey, SP Chair, maafkan mama dah kui no kui ni lain ada belum? Masih mau kacau?
9: Oh right right right, nang apa yang
7: cuma? Jasa kerja kerja tak nengang lebih.
9: SP Chair, sehi ohum ohum lelak transfer tu nampak ni. Ado district amat ada SP, amat itu nampak ni dina. Mado, aiyi mio aiyi tu bukan ni na.
8: Nang la sahaja kari wani. Ati saya sahaja kari kari wani kan kong nara ka, mung nara kong nara di padu. Aiyi nang kari wani ke? Hey, nang kari wani?
9: Aiyi si Scorpio gang teng high sih kong dia. Scored commander kau helaga naiban white umi am teng nereda antar tiap.
8: Scored commander kau makuta, lain kau misiu macam jam lain beriko. Nang hatu ura. Eh rasi oksi lagi ti, thabak telat kau itu ujaru beriko. Thun hatu lu ini ada. Aish kau
7: macam mana?
8: Aiyu kau ini naik kau. Aiyu tu ni apa?
9: Hey, kau macam tu.
8: 哎，
9: 走吧，走走走！
8: 哎，你弄歪了，倒不离，压得歪了，压得歪了。
10: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ

0: आकाशवाणी इम्फाल की मेगाहर्ट्ज़ चामगाउं दसिमा दसंदुक चरीबा एफएम संगाई चैनल लेकिनी अदुना थौरम ताबिरी बसी हौजिक पुंगफम स्टंग ताबिरसी मतम की वाफम दा इंटरनेशनल जस्टिस डे अईबा इबोयाम खुमन
1: अनिसुबा मालेम के लंचाउदा मियोय लिसिंगसा कयागे थवाई मांगन खरबा मतुंगदा माइ पाग्लबसिंगना मिलिटरी ट्राइबुनल सिंग सेमदुना माइथिरबसिंगबु न्यूरेमबर्ग अमसुंग टोकियोदा वायल चथदुना चैराक पेखी न्यूरेमबर्ग ट्राइबुनल की पाउजेलदि इंटरनेशनल लॉगे मायोक्ता क्राइम तौरिबसि मियोय बरनी सग उदबसिंगना नते अमसुंग असिगुंबा क्राइम तौबा इंडिविजुअल सिंगबु चैराक पीब खंगना इंटरनेशनल लॉगे प्रोविजन सिंगासि सनहनब गमलगद्रा हाइबसिनी ट्राइब्यूनल अनि असिना मियोयब खुनाइद असुम तौब लेंद्रब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अम लिंद्रगदि तुंगलमसट की मियोयब खुनाइद असुम वायल हाइबदु लैहौररै हाइबगी पाउजेल अम पिरखि तसेंगनमक न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल असि मालेमगी लैमाइदगी मतम सुपगी ओइना चैराक पिंगमद्रब सिंगी खोंगकुल मुथनबगी अहानब खोंगथांगनी वाखलोन असिना लमजिंग ओइदुना यूएन चार्टरगी चैप्टर तरेट सुबगी मखादा सिक्योरिटी काउंसिलगी वारे मतुंग इना कुमजा लिसिंग मजमापन मरबुद्रा हुमदोइदा इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर युगोस्लाविया आईसीटीवाई मसुंग कुमजा लिसिंग मजमापन मरबुद्रा मरीदा इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा आईसीटीआर लिंगदुना लैबाक अनिसिदा वार क्राइम तबुसिंगु फागतुना वायल चथकी अमसुंग मखोइगी मसादगी चैराक पिंगमदबगी कुयोम खोक्तोखी ICTY अमसुंग ICTR ना खोंहौ ओइरगा मालेमगी लेबाक सामकुन्ना कुमजा लिसिंग मजमापन मरबुद्रा निपान गी जुलाई 13 ते सेमखिबा रोम स्टेट्यूट ते युफम ओइरगा लिसिंग अनि अनि गी जुलाई अमदा रोम स्टेट्यूट सनब हौखिबगा लोइनना नुमिरसिदा नेदरलैंड्स की हेक्ता इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC लिंखखि मसीदगी असुंब वायल बुपामजबा मालेमगी मियामना सही खुदिंगी जुलाई 13 पु इंटरनेशनल जस्टिस डे हाइन पांगथोंगनरगली ICC na miliyang thamlibasi genocide, crimes against humanity, war crimes masung crimes of aggression, hirammari asidani. Asumna malemgi miyamna thajabagi paringda ICC na lokotpa ahanba case oina, kumza lising ani ani ahum phawada thokiba Congo gi civil war da angang lami loksil laga mungnabada yahunduna war crime tobgi maralda Congo gi lalholu singba Thomas Lubanga dailobu kumza lising ani tarukta ICC na pharga hekta chathaki ba wailda kumza lising ani tarani thoi gi July 13 da mahakpu sahi tara mari gi phadok pikhi हानगी सुदान की प्रेसिडेंट ओमर अल बासिर बु लेबाक तुदा रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बुन यूक्रेन दा लोइनना हौजिक गजा दा थोगलिबा मुगनबा असिग मरी लेनना इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हानगी डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेन अमसुंग हमास रोसिंगबा इब्राहिम अल मासरीबु वार क्राइम अमसुंग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तोबगी मराल दा आईसीसी की चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान मखोइबु फानबा अरेस्ट वारंट इशू तोखरे लैबाक अमगी लैंगाक मकोकपु आईसीसी ना फानब मसुंग वायल चथनब तौबसी ओमर अल बासिरगी थौदोक असिना अहानबनी रोम स्टेट्यूटा पार्टी ओइबखक नतना स्टेट्यूट असिदा पार्टी ओइदबा स्टेट अमगी नेशनल नत्रगा मियोइना आईसीसी गी जुरिसडिक्शन द लैरिबा जेनोसाइड वार क्राइम क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अमसुंग क्राइम्स ऑफ एग्रेसन ग मरी लेनबा साथीब मराल लंगजबगी मरम साब खुदम सांगदम लैरबदि महाकी मथकतसु यूएन सिक्योरिटी काउंसिल न सिनरक लगा नत्रगा रोम स्टेट्यूटा पार्टी ओइरिब लेबाक अमना रेफरेंस पिरगा आईसीसी गी प्रोसिक्यूटर मसा मंगना इन्वेस्टिगेट तौरगा सु मोतु केस लोकटपे याई हौजिक फाउबदा लैबाक साम कुन्थ्रामापन्ना रोम स्टेट्यूटा खुयेक पिरेदुगा लैबाक साम कुन्मंगाना रेटिफाई तौदुना स्टेट पार्टी ओइरे यूएस ना टेरोरिज्म थेंगनबगी मिंगदा मालेमगी लैबाक कयादा महाकी लामी थासिनबा रशियागी ने यूक्रेन अमसुंग सेसेनियागी वाथोक चाइनागी ना सिनजियांग प्रोविंस की उइगर मुस्लिम सिंगी वाथोक इंडियादना काश्मीर अवांग नोंपोक अमसुंग माविस की मुमेन मरम ओइदुना रोम स्टेट्यूटा स्टेट पार्टी ओइरुरगा आईसीसी की खुद संगलकद्रा हाइन मी पाइबदगी यूएस रशिया चाइना अमसुंग इंडियाना रोम स्टेट्यूटा याउदबरा हाइबसी हौजिकसु वहंग ओइरी लैबाक मरीसिना रोम स्टेट्यूटा याउदबसिना मालेमगी लैबाक अतैना स्टेट्यूट असिदा याउबदा निंगन हल्ली मसिना मरम ओइदुना बुरुंदी फिलिपिन्स अमसुंग मालेसियाना रोम स्टेट्यूटगी हंदोखरे यूएस रशिया इंडिया अमसुंग

0: ओजा तो नॉर्मल आई टबरो
1: आई लिबरा नहीं टबरा आई लाख देगी लोड खराबरा करीनो
0: हो इमुं सिबु का ना लेगे
2: आई ते मा करी लेने ते मा
0: करी लेरे काय दना इसा नुपी दो मा की ममाई दा मखोई कना कना ननो हुई ना हुदों ना खोट पदों ना ने खोट पी नकले मखोई अहु मरी संग दना फुई हाय नखोई ओजा मयाम दी येंग दना मखोई की मजंग चंग दना लेरा माले नी बुआ
2: नति नति ते मा
0: स्कूल दा लाई तम द्रा माले खाना बो ओई ना तम दना लेरा माले अदुसु इसा पंग जब सी दबो
2: ते मा आई के नुम ताई जगी ते मा ते मेने सुम पंगांग दंगांग बीरे ते मा की वादो आयो रे वखल सु ओना रे ते मा
0: काई नो दाई बुआ वाखलो ना बहाई दिया इसा की माई द खोट पदु नखोई ओजा मयाम उबी द्रा ब्रो
2: उई ते मा अखोई ओजा नु पी अमन सु मा की ममाई की डाक्टर खुजिन मफम दो ता दना बाई दना मोलो ममा युम द तैन न ब अनिरक अनिरक तयु कोई दना मा की खाउ धा पी की बनी तैमा
0: हेरा मदुन हे दे या बन ते दै बुंगो सुमाई नै तत तत न तौर बदी कमाई तौ दौरी गे हंदक सही दिने आइ न हाई सिनि इचा से स्कूल होंग द ब सुख या या रोय आइ होंग लनि
2: होय होय तैमा स्कूल होंग ब होंग द भाई दुदी इते मोय के पाम बनी करी सु आइ ये चरोय तौ बत बु ngasigi thoki ba thok dok to adugi wari du de ai itai ma de seng na tam jake
0: yare bu mo ai angang de gitare
2: hoi itai ma angang de gisu tabi yo do ai na su phajana ong ta tam jake amagi michang chuna taba aduga amagi michang chuna taba
0: magi michang chuna taba amagi michang chuna taba hai ba du da ne michang nga dum sanga ba ni bu mo
2: as itai ma gi wari du di kainom de sakhi dore na ti itai ma ong ta tabi yo sumdau ba ni
0: sumdau ba ni angasi na sumdau ba ni a khayeng na sumdau ba ni
2: itai ma वरि से तागी हाइब्रा तारो हाइब्रा तेमा इसान अबु लालसु इसान अबु चुमसु वरि दुदि खंबी खिबो मथो मताई दना
0: हो नंग न लीब वरि द दिने इसान अदुम लालन
2: होइने इसान लान बलान दबा वरि दुदि सुमदो बनी आइ लिजेगे लास्ट पिरियड त मखोइ से यो यो तो दना खन रख बनी अदु द एखै ओजा मेयाम सु संगसिन दुने येंग जेरुइ मतम दु द इचान नुपी तुमा सु योरमी मखोइ न लीब वरि दो आइ तम जगे तेमा ताबियु
0: तारिने
2: सुमदो बनी तेमा
0: सुमदो बनी तेमा
2: अस इतेमे नंगजे ngaingom khidre he singba नसानु पिगी ने मामा ने भी सिल्की ना वहूंग मतु मचा मचा मंगा खक मखोई फमी ने ब मंगा दुगी पुरक पा चलम दाई दा मामा ने भी मंगा दुदा अमामं पी बजानी मधुदा पीरी बदो वहूंग मतु दो इचानु पी तुमाना मंगों द फजदे ब पी अमद फजब पी है बगी वहूं दगी ये नरक पदगी खन नरक पनी तेमा अदुबु ने फजब दी चप माने बनी
0: इबुंगो ने सेगाई खरब दुसु चप माने करम न खंग बीरी बा
2: ओ खन बलो रेगा ने खाम दोग न बलो रेगा सेगाई रेगा तारी वहूं मतु मचित मचिसिंग दो पुंछन रेगा येंग नबद खंग बनी तैमा अदुगा सिल्कीना सावरगा पी बदु पाम दिए मुहाय आइगी दना अथी ब पी अमुहाय महै महै अदुदगी मिचंग चंग नदना मखोई फुना खिबनी इतै मगी अंगांग दो आइ हाइबदि हाइनिंग दे पोचे फन खन बगी सरुक अम यौ यौ दे फत्तब नेगेटिव मा तद खन गलि अंगांग दे तैमा
0: ओजा सुनी आइंगोन दसु इचा दसु नेगेटिव ओइना दम खल्ली
2: हो अदुदिने इतै मोहिना खन बगी आइसु खले इबा
0: इबुमो न माने न खनबा अदुदगी अखुइसु खलकपनि
2: नति नति तैमा इतैमगी इसानुपि न खनबगी वानी वादो अखुइन मुक तंबई वानी तैमादा
0: यारे यारे इबुमो वारी से लोइरे रोय आइ खंगे आंगांग सिंगदुगी लैफम ममा मपागी ममिंग आइगोंदा ने इरागा पिरो मयुम मयुम दने आइसा लुगे परा म तंबिरमगे नत्रबदि मखोइ इतत ततनने इसादा सुखितन हौदन लैरनि सी एम दने ममिंग मथा लैफम इरो इबुमो
2: इतैमा आइ मदु इब सुंगम गमोय मदु आइगी थौन नति तैमा
0: ओ फरे फरे अदुदी आई हयंग स्कूल द लाकपदा प्रिंसिपल तगी लौ बता रे दना
3: चरोट हबुंगना लाइसाबा लीलामचा सितामि नखिबग लोइनना लैतारसि पुंगिंग वखलगी ngasigi tangkak asibuta biramneba khwai pumnamakpu amukahanna khuramjari

इसें से तहन जखे बगल लुनना मतांग से दा गीत की थोरम संदूक चबलो जरे लुनना आकाशवाणी इम्फाल के एफ एम संगाई चैनल की थोरम परिंग संदूक पलो सिंचन बगी मतम योरकले हैं इंगें की हमने पान बा सकाप तले सिंगा मगा चमापल निफुनी पाल जुलाई की तांग तरह तरह इंग्लिश सिंगा निकुन तरु इराई नुमित नुमित सिगे आयु की पुंग मंगा मखाई ताब मतम दा चैनल सिमकी थोरम परिंग संदूक पा हाउदूक जगनी हाउ जगनी मतम दो फाउ बदंग ताबिरी बा मयां पुंग नमक तगी गायने आथंगी जरी खुरुम जरी जय हिंद।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों आपका दिल से इस्तकबाल है और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर सिंगार। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान। दोस्तों कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, जैसे सुबह की पहली धूप, बारिश की भीगी हुई खुशबू या किसी पुरानी तस्वीर को देखते ही चेहरे पर आ जाने वाली मुस्कुराहट। पुराने हिंदी फिल्मी गीतों की भी तो यही खास बात है कि ये वक्त के साथ पुराने नहीं होते बल्कि हर बार सुनने पर कोई नई याद, कोई नया एहसास साथ ले आते हैं। आज की इस महफिल में बातें होंगी इश्क की, यादों की, मोहब्बत की, इंतजार की, मुलाकातों की, जो जिंदगी की किताब में हमेशा ताजा रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन सदाबहार नगमों का एक खूबसूरत सफर इस बेहतरीन से गीत के साथ।

अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ रिश्ते शब्दों से ज्यादा खामोशियों में समझ आते हैं? पुराने गीत भी कुछ ऐसे ही होते हैं, कम अल्फाज में दिल की पूरी बात कह जाते हैं, और शायद इसी वजह से बरसों बाद भी ये धुनें हमारी यादों का हिस्सा बनी रहती हैं। और जब कभी हम इन धुनों को सुनते हैं तो माजी के उन्हीं किस्सों में डूब जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो मोहब्बत की उसी सादगी और उसी खूबसूरती को अपने सुरों में समेटे हुए हैं।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाजिर होता हूं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम. दोस्तों, मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता, लेकिन कुछ शामें जरूर होती हैं जब हर हवा का झोंका किसी की याद दिलाता है, और जब साथ हो पुराने हिंदी फिल्मी संगीत का तो हर लम्हा जैसे थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है. आइए इसी एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला खूबसूरत सा गीत.

कभी कभी कोई धुन सुनते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं पर ठहर गया हो। एक पुरानी सड़क, एक चाय की प्याली और रेडियो की हल्की सी आवाज और दिल में बसती हुई कोई मीठी सी याद, यही तो जादू है इन फिल्मी गीतों का। चलिए अब सुनते हैं एक और यादगार नगमा।

दोस्तों, पुराने गीतों की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये हर दौर में अपने से लगते हैं, चाहे माँ बाप की पसंद हो या आज की पीढ़ी की नई खोज। अच्छी धुन और अच्छे अल्फाज कभी अपनी चमक नहीं खोते। चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश की तरफ।

दोस्तों रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात ये है कि उनमें यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। कुछ लोग साथ देते हैं और तो कुछ सिर्फ यादों में रहते हैं, लेकिन एक अच्छा गीत दोनों के बीच की दूरी को पल भर में मिटा देता है। और इसी एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अगला और आखिरी गीत। और इसी गीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और अब आइए सुनते सबसे पहले मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन फ्लैट नोट। सेंसेक्स सेटल्स एट 77,187। निफ्टी ड्रॉप्स 6 पॉइंट्स। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्लोज इन नेगेटिव जोन एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार आज सपाट कारोबार के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 77,187 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 6 अंक नीचे आया। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: डेटा जो है गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, तो इतना आसान नहीं है उस पर भरोसा करना। और उसके बावजूद भी चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ 4.25% अपना जीडीपी ग्रोथ दिखाया, जबकि उनका लक्ष्य 5% था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना में जब 4% के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, और यदि भारत में हम 4.5-6% के साथ की उम्मीद रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम काफी अच्छा कर रहे हैं गिवन द एनवायरमेंट दैट वी आर
1: गिवन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द होल वर्ल्ड।
2: एक चीज अगर क्या हम जोड़ मतलब ये समझ सकते हैं कि निवेशकों का जो भरोसा है ऐसे में वो अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना अब से ये जो संघर्ष इस साल हम जो देख रहे हैं इसके पहले जैसे बना हुआ था, या कुछ बदलाव आया है?
0: बिल्कुल, मैं ये कहूंगा जहां भरोसे का सवाल है तो भारतीय निवेशक पर्टिकुलरली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही पैसा लगा रहे हैं, उनका भरोसा बना हुआ है और वो टिके हुए हैं। आप ये देखिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो काफी सेलिंग कर रहे हैं, और उसके सामने वो कोई बहुत बॉयंट मूड नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत तेजी में है या बहुत अग्रेसिव है। अगर आप म्यूचुअल फंड डेटा को देखें तो करीब 30,000 करोड़ रुपए नेट इन्फ्लोज अभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आ रहा है, और ये एक स्टेबल नंबर है पिछले 6 महीनों से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो स्टेडिली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा यूफोरिया में नहीं कर रहे और पैनिक में वो बेच भी नहीं रहे।
1: पर जब हम भरोसे की बात करें, जैसे भी आपने पुनीत कहा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं भरोसा है उन्हें, would you say that a lot of that trust that we're talking about is also because of the fact that, like we just discussed right now, most of the happening, what the way the markets are behaving or reacting is because of geopolitical situations. When you look at the numbers in India, when you look at the situation, the way India's progressing, things are pretty steady and going in a very positive direction, and that's what probably is earning the trust of the investors, retail investors.
0: Absolutely. In fact, the way we have managed this difficult economic condition, I think, is quite commendable. The policies that the government followed to stabilize the economy, to keep inflation under control, relatively speaking. Yeah. I mean, inflation could have shot up like anything, like in many other Asian countries. So my guess is that people take comfort from that. Yes. And the truth is that the liquidity conditions, the economic conditions continue to be quite benign in India. There was a lot of apprehension that we will see, you know, a lot of pressure on consumption, a lot of pressure on inflation front. Fortunately, we haven't seen that.
1: Yeah.
2: पुनीत, क्या अभी आपको लगता है कि जो निवेशक है, घरेलू निवेशकों की हम बात करते हैं, तो अपेक्षाकृत अब वो सुरक्षित और बड़ी कंपनियों का रुख करने लगे हैं, खासतौर पर निवेश के संबंध में?
0: नहीं, देखिए निखिल, बड़ी मजेदार बात है ये कि पिछले दिनों यदि हम म्यूचुअल फंड फ्लोस की तरफ नजर डालें तो आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप्स हैं उसमें इनफ्लोस अब कम है, और जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है उन स्कीम्स में अब ज्यादा फंड फ्लोज आ रहे हैं।
2: लेकिन उसमें भी गिरावट आ रही है।
0: उसमें गिरावट देखिए उतनी नहीं है, और जब इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं और सस्टेन ढंग से लगाते हैं तो एक्चुअली वो सोफिस्टिकेशन का एक संकेत होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो अब मिड कैप्स में स्मॉल कैप्स में निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो शुरुआती निवेशक होते हैं, स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो कंफर्ट ढूंढते हैं लार्ज कैप्स में, और इसलिए हम देखेंगे। अगर आप देखें तो इंडेक्स में उतना मूवमेंट नहीं आता है, लार्ज कैप जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी निवेश पिछले दिनों हुआ है।
1: So like you said, if the retail investor is investing in small cap and mid caps, it's actually a sign of maturity of our retail investors. Absolutely. You know that, like you're saying, in the beginning, everybody would look for at large caps because, you know, that is where you get assured returns. But if you're moving towards mid cap and small cap, that's a sign of maturity.
0: That shows maturity, that shows confidence that people have in large, number of
1: companies. In the Indian story as well. Right, let's move on to the next story. Tech Mahindra today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June this year. The company's revenue increased by 17.7% on an annual basis to 15,712 crore rupees. On a sequential basis, the company's revenue grew by over 4.2%. The company's net profit rose by around 8.2% to 1,465 crore rupees on a quarterly basis.
2: एशियाई बाजारों की बात करें तो एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 6.4%, जापान का निक्केई 2.8%, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.8% से ज्यादा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम लगभग 0.4% गिरा था जबकि ताइवान का ताइएक्स बिना किसी बदलाव के बंद हुआ इसके उलट हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% से ज्यादा बढ़ा था इस बीच दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने पिछले 3 साल से ज्यादा समय में आज पहली बार अपने मुख्य ब्याज दर को बढ़ाया है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद बैंक ऑफ कोरिया ने इस दर को 2.5% से बढ़ाकर 2.75% कर दिया जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से बढ़ रही महंगाई से निपटने के लिए मुद्रा आपूर्ति को कम करना है इस साल मई और जून में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 3% से ज्यादा रही जो बैंक के 2% के लक्ष्य से अधिक है पुनीत दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो जिस तरह का हमने ये बदलाव देखा 3 साल से अधिक समय के बाद बदलाव आया आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो अमेरिका और इंडिया और चाइना के आंकड़ों का भी यहां पे ध्यान हमें रखना जरूरी है तो इस कदम को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह से आप देखते हैं आपको क्या लगता है कि कैसा संकेत आने वाले समय में मिलेगा हमें
0: देखिए कोरिया का जो शेयर बाजार रहा है पिछले 2 वर्षों में वो बहुत ही चौंकाने वाला बाजार रहा है पिछले वर्ष करीब करीब 2.5 गुना वहां पर इंडेक्स में तेजी आई और इस वर्ष ऑलरेडी करीब 1.5 गुना तेजी आ चुकी थी तो कोरिया का बाजार में एक अद्भुत मैं कहूंगा तेजी रही और उसका खास कारण यह रहा कि वहां पर जो चिप मेमोरी चिप बनाने के जो स्टॉक्स हैं उसकी एक दो कंपनी है बड़ी कंपनी और वो उनका वेटेज बहुत ज्यादा था और उसमें बहुत ज्यादा निवेश हुआ और इसीलिए वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत है आज 6.5% आपने बताया कि इंडेक्स गिरा थोड़े दिन पहले 7% बढ़ गया था उससे पहले वो एक दिन 10% गिर के वहां पर सर्किट लग गया तो इतना बहुत वॉलेटाइल मार्केट है लेकिन बहुत बड़ी मार्केट है ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी मार्केट है लेकिन नैरो मार्केट है उसके अपेक्षा में हम देखें तो जो बाकी जो बाजार है वो थोड़े डाइवर्सिफाइड रहते हैं पर फिर भी उसका असर भारतीय बाजारों में पड़ता है क्योंकि जब हम इमर्जिंग मार्केट्स कंपैरिजन करते हैं तो अगर कोरिया का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भारतीय बाजारों से आता है एफआईआई पैसा निकालकर वो कोरिया में या ताइवान में या जापान में इन्वेस्ट करते हैं मेरा खुद अपना अनुमान है कि जैसे जैसे हम देखेंगे कि जो एशियाई ये बाजार है कोरिया जापान ताइवान वियतनाम हमने इनकी बात करी ये जैसे जैसे बाजारों में गिरावट आएगी वहां पर कॉन्फिडेंस कम होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का तो हम वो पैसा देखेंगे कि भारत में आएगा तो मैं उन बाजारों को बहुत ध्यान से देखता हूं क्योंकि वहां पर जो ट्रेंड है उसका रिवर्स ट्रेंड एक्चुअली भारतीय बाजारों में हम देखने को मिलता है हमें तो ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है लेकिन वहां पर अभी वॉलेटाइल है और मुझे लगता है कि कमजोरी रही
2: लेकिन जिस तरह से ब्याज दर बढ़ाने की बात है जहां तक अगर थोड़ी सी बढ़ती हो तो उसका असर पड़ता है खासतौर पर पूंजी जुटाने के लिए
0: और वो तो बहुत नेगेटिव है अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है जैसे कोरिया में उन्होंने बढ़ाया सेंट्रल बैंक ने तो साफ एक संकेत है कि वो इकोनॉमिक स्लोडाउन लाना चाहते हैं वहां पर ज्यादा ग्रोथ हो रही है एसेट प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जो है वो अपना रेट कम कर ग्रोथ कम करना चाहती है तो हमारे लिए बेहतर है और डेफिनेटली उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा
1: पुनीत लाइक यू सेड यू नो इंडेक्सेस लाइक द साउथ कोरियन KOSPI एंड अदर वेयर If we talk about South Korean KOSPI, the weightage of certain companies which are associated with chip manufacturing, you know, that very big percentage or the weightage is very big. So when you compare it to Indian, you know, indices, whether it's Sensex, do you think it's actually a good thing that, you know, indices like Sensex and NSE, they are not completely, you know, being dominated by a certain sector or by a certain, you know, kind of market, so to speak?
0: Anubha, I think this is one of the strongest points which will really help Indian markets raise capital in the long term. Huh. We are a very, very diversified economy. It's not, we are not, KOSPI, for instance, has weightage of 55% from just 2 companies.
1: Yes.
0: Only 2 companies contribute 55% to the index weightage.
1: Yeah.
0: So what kind of money would one invest in that economy?
1: Yeah.
0: Because you are concentrated investment only in 2 companies. In India, we have more than 7,000 listed companies. Our indices are very strong. Even within the indices, you will see very wide diversification of sectors. So you will have banking, you will have healthcare, you will have telecom, you know, all kinds of sectors are there. And there are substantially large companies. So I think in long term foreign investors or all kinds of investors will find much more comfort investing in India. They'll have many more choices to invest in other markets which are narrow markets. They may make money in the short term, no?
1: Yes.
0: So they try to make hay in the last couple of years, but I think in the longer term they will definitely come to India. And what we saw was last 2 years they pulled money out of India, they put it in those momentum markets, but eventually for the long term growth they will have practically no choice other than India to invest in.
1: And the next news from Nikhil.
2: जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश के वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी FI इंडेक्स में सुधार हुआ है। ये सूचकांक मार्च 2025 में 67 से बढ़कर मार्च 2026 में 70 तक पहुंच गया है। बैंक के अनुसार ये बढ़ोतरी दर्शाती है कि भारत वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाने और लोगों को वित्तीय गतिविधियों से जोड़ने में लगातार प्रगति कर रहा है। इससे पता चलता है कि देश के नागरिक अब बैंक खाता रखने के साथ साथ डिजिटल आधारभूत ढांचे, ऋण और बीमा उत्पादों का भी काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सूचकांक बिना किसी आधार वर्ष के 97 संकेतकों को परखता है और 3 मुख्य पैमानों पर देश की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करता है। हालिया बढ़ोतरी उपयोग और गुणवत्ता में बड़े सुधार को दिखाती है। बैंक ने कहा है कि ये सुधार मुख्य रूप से वित्तीय

0: सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से हुआ है, जो वित्तीय समावेशन के सशक्त होने का संकेत है। इनमें उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या की हिस्सेदारी 35%, इस्तेमाल करने की 45% और गुणवत्ता की 20% शामिल है। ये सूचकांक पहली बार अगस्त 2021 में मार्च 2021 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया था और इसे हर साल उपलब्ध कराया जाता है। तो पुनीत जी, जिस तरह से आंकड़ों की बात है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, सुधार हमें नजर आ रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक भी ये बात कह रहा है, तो लोगों को निवेश की दृष्टि से अगर जोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूती देने के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार उसमें उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, जिससे देश की प्रगति भी हो रही है।
1: निखिल, देखिए पिछले 10-12 वर्षों से यदि आप सरकार का पूरा प्रोग्राम देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका एक सेंट्रल पिलर रहा है। हम डिजिटाइजेशन की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करें जनता को, तो उसका जो आधार है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में है। यानी जो प्रधानमंत्री ने शुरुआती अपने बिल्कुल जब उनकी टर्म शुरू हुई थी तभी उन्होंने कहा था जैम, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल। और अगर आप देखें तो सारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो उसका एक सेंट्रल सेंटर पीस है। और बड़ी मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे गाँव में बहुत दूर दराज जो बिल्कुल इनएक्सेसिबल एरियाज थे, वहां भी चाहे और सुविधाएं पहुंचे ना पहुंचे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो अपने मोबाइल से अपना काम कर पाते हैं, जो वर्कर्स इमिग्रेंट्स हैं काम कर पाते हैं, वो सैलरी घर भेज पाते हैं। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत जैसे देश में जहां पर बहुत रूरल पॉपुलेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना बहुत मुश्किल था। अगर आप वहां ब्रांच बैंकिंग करना चाहेंगे या वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग करना चाहेंगे बहुत मुश्किल थी, पॉसिबल ही नहीं थी। तो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज बीन अ रेवोल्यूशन और ये भारत का जो मॉडल रहा है, आप सब, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है एंड दे आर ऑल ट्राइंग टू फॉलो।
0: इससे स्टार्टअप्स की क्या भूमिका है, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: ये बहुत बड़ी भूमिका, देखिए ये बात तो सही है कि जो स्टार्टअप्स ने जिस प्रकार से इसको फैलाया है पूरे देश में, आप एप्स की बात करें, फिनटेक कंपनीज की बात करें, आप पेमेंट गेटवेज की बात करें, यूपीआई की बात करें, तो इसको जो एक मैं कहूंगा एक विजन थी प्राइम मिनिस्टर की और एक विजन थी सरकार की कि लोगों से जोड़ना, वो सरकारी तंत्र अपने आप नहीं कर सकता था, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था और उसको पूरा निभाया है प्राइवेट सेक्टर ने। पर्टिकुलरली जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कंपनीज हैं, अगर आप क्विक कॉमर्स की बात करें
0: जी,
1: मतलब इसके ऊपर तो आप समझिए कि हम कितना ही लंबी बात कर सकते हैं और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई, हम देखते हैं कि कितना बड़ा इसका असर आम आदमी के जीवन पे पड़ा है।
2: पुनीत, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंप्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल inclusion index and when we're talking about financial inclusion, financial literacy, how big a role and how crucial is it when, you know, we talk about we have a vision, the Prime Minister has a vision of Viksit Bharat by 2047. How crucial is the role of this financial inclusion and the improved financial literacy in that, in achieving that?
1: So Anubha, what we need to realize is that financial inclusion is the only way that we can lift people out of poverty. See, the financial inclusion wasn't really meant to, I mean, it of course it has benefited everybody, people in the upper strata of society with higher incomes, with more prosperity, but financial inclusion is a crucial differentiator for people at the bottom of the pyramid.
2: Yes.
1: It is they who have been able to utilize their money, save their money, invest their money and benefit from financial inclusion. The whole focus of financial inclusion has been to target people who have been excluded from the formal financial system, and I think that is where the greatest achievement for these efforts has been, and the constant improvement in financial inclusion index showing that more and more people are getting better services, they are utilizing it more. If you look at the composition of index, it's very interesting. It says quality, utilization, accessibility. So these are the three main features of financial inclusion.
2: Right.
1: I think it's made a huge difference to India's growth.
2: Let's move on to the next story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal interacted with the Indian business delegation comprising members of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Confederation of Indian Industry, ASSOCHAM and other regional associations in Brussels, Belgium. In a social media post, Mr. Goyal said that they discussed how the India-European Union Free Trade Agreement can open real doors for Indian industry and deliver tangible outcomes for Indian businesses, MSMEs and people.
0: सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। बदली हुई दरों के तहत डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर ₹15.50 प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि ATF के निर्यात पर कर बढ़ाकर ₹14.50 प्रति लीटर किया गया है। पेट्रोल के निर्यात

0: of the world's largest exporters of refined products now. And government calibrates these taxes depending on the demand for these products. So if I look at this news, it tells me that government is expecting more exports from India, more pressure for exports from India for ATF and diesel. And therefore, we have raised custom duties. We want to retain some products within the country because there must be demand internationally. So mostly these figures or these taxes are revised based on international demand and also underlines the fact that India has now become a major exporter of refined products.
1: And would you also say that, you know, as and when, if supposing whatever, whether these export duties increased or decreased, it's also to do with whatever is happening on the international front, because if the prices go up, then obviously we also import. And so that's also to make sure that the domestic supplies remain intact and domestic domestic users get priority over exports.
0: So to some extent, yes, we are trying to protect and you know, build our own reserves. But the truth is that India, while it imports a lot of crude oil, we are very comfortable vis-a-vis the refining capacities. In fact, we are net exporters of refined products. So that is not that much of a concern for us. But it, of course, puts the taxes are in context of what is the demand internationally.
1: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices were marginally up today as escalating Iran and U.S. tensions raised worries about a prolonged West Asia conflict. Brent crude was trading 0.2% up at $85.16 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.5% up at $80.02 per barrel when reports last came in. And let's have a look at the gold and silver prices as well. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.4% down at 1,41,870 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.9% down at 2,19,030 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.4% गिरकर 1,41,294 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.8% नीचे आकर 2,18,809 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। पुनीत, हमने कई सारे मुद्दों पर बात की, कई सारे विषयों को इस कार्यक्रम में लिया। आपके अनुसार आज के समय में निवेशकों को किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए वो, मतलब एक अच्छा निवेश कर सकें?
0: देखिए निखिल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निवेशक हैं उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म अट्रैक्ट हो करके, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, उसमें लुभा करके उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि भारत की जो स्टोरी है उसमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बिकॉज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इसमें अगर जो लंबे समय तक निवेश करेंगे उनके लिए रिटर्न्स अच्छी रहेंगी। तो कुल मिलाकर डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, एसेट पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए, आपको हर एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए और खास तौर से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए।
2: यानी कि हर एक बात पर, छोटी हो या बड़ी हो, इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और उस रिसर्च करके, खुद रिसर्च करना बहुत जरूरी है, किसी की कहे सुनी बातों पर निवेश ना करें, वो सबसे बड़ा एक दुश्मन होता है हमारे पोर्टफोलियो का।
2: बिल्कुल पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद निखिल।
1: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन फ्लैट नोट। सेंसेक्स सेटल्स एट 77,187, निफ्टी ड्रॉप्स 6 points, मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्लोज इन नेगेटिव जोन, and global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपसे आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के

OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ अब भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और BSF जवानों से बातचीत करेंगे। वे BSF से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पन राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूघस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है अभिमान, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

कहते हैं कि रात जब सब सो जाते हैं तो धीरे धीरे रात अपनी चादर को फैलाती है और तब कहीं दिल से हल्की सी आह खामोशी में सुनाई देती है। दिन भर की हंसी के पीछे छुपे वो अनकहे सवाल धीरे धीरे आंखों में उतर आते हैं और नींद से पहले एक कहानी बन जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तब यादें भी दस्तक देती हैं, कुछ मुस्कुराती हुई कुछ चुपचाप रुला जाती हैं। वो बातें जो कभी कह नहीं पाए, वो एहसास जो शब्दों में ढल नहीं पाए, रात उन्हें अपने आंचल में लेकर चुपचाप सहला जाती है। जब सब सो जाते हैं तब हम भी थोड़े सच हो जाते हैं, न कोई दिखावा न कोई शोर, बस दिल और उसकी आवाज। कभी खुद से सवाल करते हैं और कभी खुद को ही जवाब भी देते हैं और इसी खामोशी में थोड़ा थोड़ा जी लेते हैं। रात सिखाती है हमें कि तन्हाई दुश्मन नहीं होती, कभी कभी यही तन्हाई हमारी सबसे सच्ची सबसे अच्छी दोस्त होती है। और अगला गीत फिल्म कामचोर से।

जब शहर की धड़कन धीमी पड़ जाती है और खिड़कियों की रोशनी एक एक करके बुझती है, तब कहीं भीतर एक छोटी सी दुनिया जागती है। वो दुनिया जहां कोई आवाज ऊंची नहीं होती, बस एहसास धीरे धीरे करके दिल की सतह पर उतरते चले जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तब वक्त भी जैसे ठहर जाता है। घड़ी की टिक टिक किसी अधूरी बात का जवाब लगती है। कभी कोई चेहरा याद आता है जो अब पास नहीं है, पर उसकी मुस्कुराहट हमेशा साथ है। अभी रात में साथ चलती है कुछ सपने जो दिन में खो गए थे। रात उन्हें फिर से याद दिलाती है, फिर से थाम लेती है और कहती है, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। इस सन्नाटे में हम अपने डर को भी सुन लेते हैं और हौसले भी, जो दिन की भीड़ में कहीं दब गए थे। जब सब सो जाते हैं तो दिल धीरे से कहता है, तुम अब अधूरे नहीं हो। और शायद यही वजह है कि हर रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी छिपी होती है। हर रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी छिपी होती है। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अगला गीत फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की।

चला है कि हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है रुदाली, आवाज है आशा भोसले की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश

0: की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियों चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी पर का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पू महरामोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बातचीत की और पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे। इस बीच गुजरात, झारखंड, दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 42वें ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia said, India's social protection coverage has expanded from 19%

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है सच्चा झूठा, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।
1: यूं ही तुम

कुछ पंक्तियां हम लिखते तो हैं पर पूरी नहीं करते। जैसे दिल में एक खत शुरू होता है पर आखिरी शब्द कभी उतर नहीं पाता। कागज खाली नहीं होता, वो बस इंतजार करता है उन जज्बातों का जो कभी पूरी तरह कहे नहीं गए। कभी किसी नाम पर कलम रुक जाती है और वही ठहराव सबसे ज्यादा कुछ कह जाता है। जो पूरा लिख दिया जाता है वो शायद उतना खास नहीं होता जितना जो अधूरा रहकर भी सब कुछ कह जाए, क्योंकि हर कहानी अंत तक पहुंचे ये जरूरी नहीं। कुछ एहसास बीच में रुककर ही याद बन जाते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। रात जब सब सो जाते हैं तो रात शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे हर चीज को अपनी जगह पे रख देती है। बिखरे हुए दिन को समेटती है चुपचाप, थके हुए लम्हों को तकिए के नीचे सुला देती है। खिड़की से आती हवा कोई किस्सा नहीं सुनाती, बस पर्दों को हल्का सा हिलाकर याद दिला देती है सब ठीक है। जब सब सो जाते हैं तब कोई सवाल नहीं होता, न जवाबों की जल्दी, न किसी को समझाने की कोशिश, बस एक ठहराव होता है, जैसे जिंदगी ने थोड़ी देर के लिए खुद को पॉज कर लिया हो। इस सन्नाटे में ना कोई अधूरी बात चुभती है, ना कोई पुरानी याद खींचती है, बस एक हल्की सी राहत होती है, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कहा हो, आज के लिए इतना काफी। जब हम सो जाते हैं तब रात सिखाती है कि हर चीज को महसूस करना जरूरी नहीं, कुछ लम्हों को बस यूं ही बीत जाने देना भी सुकून देता है। अगला गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रोफेसर।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में अब जो अगला गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

और वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ अब भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले भारत, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन

0: में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव अधिक तापमान आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे हैं और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क की एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करें। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said, this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station today, tearing his way.

रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है पाकीज़ा, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, साथ हूं मैं जयती। एक हल्की सी जगह, भीतर भीतर कहीं एक जगह ऐसी भी होती है जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती, ना कोई सवाल, ना शब्दों की भीड़, ना किसी को समझाने की कोशिश, बस एक सादा सा सुकून जो बिना वजह ठहरा रहता है। दिन भर की भागती सोच जब थक कर लौटती है तो उसी जगह धीरे से बैठ जाती है। ना कोई शिकायत होती है वहां, ना कोई अधूरी चाह, जैसे सब कुछ वैसा ही ठीक हो जैसा होना चाहिए। कभी कभी ये महसूस होता है कि हम खुद से दूर नहीं थे, बस रास्ता थोड़ा धुंधला था, और जब वो साफ होता है तो पता चलता है सुकून कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर चुपचाप इंतजार कर रहा था। कोई शोर नहीं करता, ना ही हमें पुकारता, बस एक हल्की सी जगह बनाकर हमारे लौट आने का धैर्य से इंतजार करता। अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम बोल चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती, और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म का नाम है आज का अर्जुन। आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

मैंने मन के सबसे भीतरी सलवट में एक जगह बचा कर रखी है, जहां कोई दस्तक नहीं पहुंचती, ना किसी रिश्ते का अधिकार। वहां कुछ अधूरी पुकारे हैं जो होठों तक आकर लौट गई थी। कुछ पन्ने हैं जिन पर नाम तो लिखे गए पर भेजे कभी नहीं गए। वहां एक कोना ऐसा भी है जहां मैं बैठी रहती हूं, अपने कई रूपों के साथ, कभी प्रश्न बनकर कभी उत्तर से दूर भटकती हुई। कुछ दृश्य हैं जो आंखों से उतर तो गए पर भीतर की मिट्टी में अब भी जड़ें फैलाए हुए हैं। मैंने उन्हें छिपाया नहीं, बस संसार की भीड़ से बचाया है। कुछ बातें नदी की तरह होती हैं, बहती तो भीतर हैं, पर उनका मार्ग किसी मानचित्र में दर्ज नहीं मिलता। और अगला गीत अब लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

किसी सांझ की भीगी देहरी पर मैंने कुछ अभिलाषाएं रख छोड़ी थी, न मांगी थी किसी भाग्य विधाता से, न हथेलियों की रेखाओं में जोड़ी थी, वे बस मेरी पलकों के तह में धीरे धीरे अंकुरित होती रही, जैसे निर्जन वन में कोई बेल बिना दर्शक के बढ़ती रही। फिर जीवन ने अपने निर्णय लिखे, मैंने भी बिना वाद विवाद पढ़ लिए। कुछ मोड़ों पर मुस्कानों के दीप जले, कुछ मोड़ों पर अपने ही स्वर गढ़ लिए गए, पर एक कोना ऐसा भी बचा जहां कोई ऋतु नहीं पहुंची, वहां आज भी कुछ आकांक्षाएं निष्कर्ष तक लौटती हैं। वे हार नहीं थी, बस नियति की मोहर उन्हें न मिल सकी, वे भूल नहीं थी, बस उन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं रही। कितनी ही कथाएं लिखी जाती हैं विजयों के स्वर्णिम पृष्ठों पर, किंतु जो मन के अंतराल में ठहरे वे कहां उतरती हैं इतिहासों पर। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद मीना होंगी आपके साथ। अभी छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है 2 रास्ते, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो मुझे दीजिए अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन

जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,000 किसानों से संपर्क किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधारित वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती कीमत को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। ब्राजील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का विरोध किया है और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ये फैसला कथित अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर लिया गया है। नए शुल्क 22 जुलाई से लागू होंगे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत लाई। जो रूट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम है हमराही और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों प्यार एहसास और खूबसूरत धुनों से सजी इस महफिल में आपका दिल से स्वागत है हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा गीतों का ऐसा नजराना जो आपकी शाम को यादगार बना देगा तो मुस्कुराइए दिल को सुकून दीजिए और हमारे साथ इस संगीत भरे सफर का आनंद लीजिए

दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास किसी मौसम का मोहताज नहीं होता। कभी किसी की मुस्कान में बस जाता है तो कभी किसी की खामोशी में अपना घर बना लेता है। जब दिल सचमुच किसी को अपना मान लेता है ना, तो हर दुआ में वही नाम शामिल हो जाता है और हर ख्वाब उसी की तस्वीर से सजने लगता है। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत इसी एहसास के अनुसार।

दोस्तों अगर आपके दिल में भी किसी के लिए कोई अनकही बात है कोई खूबसूरत एहसास है ना तो आज उसे महसूस कीजिए क्योंकि सच्चा प्यार दुनिया से नहीं डरता और वो बस अपने दिल की सुनता है

जानते हैं दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां अक्सर वहीं से शुरू होती हैं जहां हम कहते हैं नहीं, और दिल मुस्कुराकर कहता है यही तो प्यार है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जो मोहब्बत के इसी मासूम इकरार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है।

जब किसी अपने का साथ मिल जाता है ना तो लगता है जैसे जिंदगी ने अपनी सबसे खूबसूरत नेमत दे दी हो। फिर दिल यही कह उठता है और किसी चीज की तमन्ना नहीं रहती, क्योंकि जिसे चाहा था वही मिल गया। इन्हीं जज्बातों को सुरों में सजता हुआ गीत लीजिए पेश है।

0: बाकी के नगमे एक छोटे से अंतराल के बाद
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है हमराही और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान

दोस्तों मोहब्बत में सबसे प्यारी चीज होती है अपनेपन की एक आवाज कभी किसी का नाम लेकर पुकारना कभी किसी की आहट पहचान लेना तो कभी बिना कुछ कहे दिल का हाल समझ लेना प्यार में दूरियां उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी खामोशी देती है कई बार दिल बस इतना चाहता है कि कोई अपना एक बार पुकार ले और सारी शिकायतें सारी दूरियां पल भर में मिट जाए तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही नगमा

कुछ लोग बहुत अजीब होते हैं उनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं लेकिन होंठ हमेशा खामोश रहते हैं दिल में मोहब्बत का समंदर होता है मगर इजहार की बारी आए तो मुस्कुराकर बात बदल देते हैं शायद उन्हें लगता है कि प्यार छिप जाएगा लेकिन सच्चे जज्बात कब छिपे हैं भला मोहब्बत की खुशबू तो बिना कुछ कहे भी महसूस हो जाती है नजरों की भाषा मुस्कुराहट का इशारा और खामोशी की धड़कनें सब राज खोल ही देती है

जब नजरें झुकती हैं ना तो अक्सर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और शायद वहीं से शुरू होती है एक खामोश लेकिन बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी। इन्हीं दिलकश एहसासों को सुरों में पिरोता हुआ पेश है अगला नगमा।

दोस्तों प्यार का सबसे खूबसूरत इजहार शायद यही है कि किसी से कहा जाए तुम्हारे होने से मेरी दुनिया मुकम्मल है और तुम्हारे सिवा कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है। तो आइए इसी बेइंतहा मोहब्बत के एहसास को सुरों में महसूस करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए

0: पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पो राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। ब्राजील सरकार ने अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ का विरोध किया है और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के कार्यालय ने अमेरिकी आरोपों को खारिज किया है। ब्राजील ने कहा है कि वे जवाबी शुल्क और अन्य व्यापारिक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज सुबह 9:30 बजे फिर शुरू होगी। कल रात अंधेरा होने पर रथों को रोक दिया गया था। आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: It says Akashwani, the news read by Harpreet Kaur. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China, and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 kilometers per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 kilometers per hour. Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah will be on a 3-day visit to West Bengal from today. Sources said that during the visit, he will participate in programs focused on border security, governance, law and order, and development. On Saturday, Mr. Shah will visit the Jumagach border outpost in Siliguri and interact with BSF personnel at the 18th Battalion border

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समय हो चुका है 4:11 और 10 सेकंड अरुणिमा कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार

दोस्तों जानते हैं, रंग तो एक दिन ढल जाएगा, चेहरे की चमक भी कम हो जाएगी, मगर इंसान का किरदार, उसकी सादगी, उसकी मोहब्बत और उसका बर्ताव, वही हमेशा याद रहता है। हुस्न पर इतराने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर दिल जीतने वाले बहुत कम होते हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान

जिंदगी की राहें चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम सफर साथ होना तो हर सफर आसान लगता है। मंजिल से ज्यादा उसके साथ चलने का एहसास बहुत खूबसूरत लगता है। दुनिया की दौलत, शोहरत और रंगीनियां भी उस सुकून के आगे फीकी है जो हम सफर के साथ होने से मिलता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, जिंदगी हर रोज एक सी नहीं रहती। कभी खुशियों के फूल खिलते हैं तो कभी इम्तिहानों की आंधियां चलती है। ऐसे में जो हाथ नहीं छोड़ते हैं ना, जो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं ना, वही असली हम सफर कहलाता है। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो हम मोहब्बत के इसी खूबसूरत वादे को अपने सुरों में पिरोता है।

दोस्तों कहते हैं जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं ना तो उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं रहती एक की धड़कन सुर बन जाती है तो दूसरे का एहसास गीत बन जाता है रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उनमें कोई आगे नहीं चलता और कोई पीछे नहीं रहता दोनों मिलकर जिंदगी की एक प्यारी सी धुन रचते हैं जब सुर और गीत साथ हों तभी संगीत मुकम्मल होता है ठीक वैसे ही जैसे प्यार और भरोसा मिलकर एक खूबसूरत रिश्ता बनाता है

दोस्तों कभी कभी मोहब्बत किसी को रोकती नहीं है, बस इतना कहती है कि चाहे जितनी दूर चले जाओ दिल से दूर नहीं जा पाओगे। कुछ रिश्तों की डोर ऐसी होती है जो नजरों से ओझल होकर भी टूटती नहीं है। कदम भले ही दूसरी राह पकड़ ले, लेकिन यादें हमेशा उसी मोड़ पर इंतजार करती रहती है। और जब किसी की मोहब्बत सच्ची हो तो उसे यकीन होता है कि लौटकर आने का रास्ता दिल ही दिखाएगा। इसी खूबसूरत एहसास को बेहद खूबसूरत अंदाज में गाया है। आइए सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहानी में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एनडीए की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर विचार विमर्श होगा। सूत्रों के अनुसार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी विचार किया जाएगा। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,73,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान

0: को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। ब्राजील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ का विरोध किया है। अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की भी ब्राजील ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज सुबह 9:30 बजे फिर शुरू होगी। कल रात अंधेरा होने पर रथों को रोक दिया गया था। आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। उधर कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. The Prime Minister will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium at Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, Prime Minister will visit Jalandhar in Punjab, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Modi held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of the father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. Ahead of the monsoon session of Parliament beginning on 20th of July, the BJP-led NDA is set to finalise its floor strategy at a meeting of senior alliance ministers chaired by Defence Minister Rajnath Singh today. The meeting is likely to focus on the NDA's legislative agenda, coordination among alliance partners and a unified strategy to counter the opposition during the session. The National Testing Agency NTA has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, AYUSH and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. NTA has said that the result has been declared in time so that the medical admission and counselling calendar for candidates stays on track. A total of close to 20 lakh candidates appeared for re-exam this year at 5,440 centres in 551 cities in India and 14 cities abroad. Gujarat Anti-Terrorist Squad, ATS, has arrested 5 persons in connection with its probe into a terror module of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed outfit. The arrested persons were identified as Bilal Abidbhai Shera, Muhammad Ayub Kadiwala, Muhammad Palan

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समय हो चुका है 5:11 और 5 सेकंड भोर सुहाने कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार

दोस्तों, जिंदगी कभी भी खाली हाथ इंतजार नहीं करवाती है। हर ठहराव के पीछे एक सीख होती है, हर देरी के पीछे एक बेहतर मंजिल छिपी होती है। इसलिए अगर आज रास्ते सुनसान है ना, तो घबराइए मत, चलते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कदम रोकते नहीं है, चाहे साथ कोई हो या ना हो।

दोस्तों बहार सिर्फ मौसम में नहीं आती, बहार तो रिश्तों में भी आती है। जब हम एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलते हैं ना, तो एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। याद रखिए, अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन मिलकर चलने वाले लोग बहुत दूर तक पहुंचते हैं। एकता में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आसान बना देती है।

दोस्तों, धन दौलत शोहरत और शरीर सब यही रह जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और मीठे बोल समय की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। ऐसा जीवन जियो के जाने के बाद भी लोग कहे इंसान चला गया, मगर उसकी बातें आज भी दिलों में जिंदा है।